एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख माह की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:57 होने को है। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे।

0: प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महर्षि वाल्मीकि का ये विचार है कि हताश न होना सफलता का मूल मंत्र है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों के लिए प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाने में मदद करता है। ये था

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस भाग 185। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग किया है अनुजा जोकरकर ने। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे रात 9:30 पर।

सुबह 10 बजे का समय है। पिटारा उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम का सुनिए निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। सुबह 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग और 12:05 पर कार्यक्रम होगा यादों की महफिल। सुरीला सफर ये कार्यक्रम दिन में 1 बजे और दिन में 2 बजे कार्यक्रम त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिन में 3 बजे का समय है सखी सहेली कार्यक्रम का और 4 बजे पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा। थैलेसेमिया की बीमारी और उपचार इस विषय पर डॉक्टर आशय प्रमोद से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आप सुन पाएंगे। शाम 5 बजे कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर। सेवानिवृत्त सहायक निदेशक दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। रात 8 बजे कार्यक्रम होगा हवा महल, नाटिका आंगन में स्वर्ग। लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 बजे का समय है कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार और रात 10 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। रात 10:30 पर कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात और रात 11 बजे रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 185।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए।

जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 185।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओ नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। श्रोताओ आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी,
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज संगीत सरिता की इस श्रृंखला के अंतिम सोपान पर हम पहुंच गए हैं। आज की ये जो आखिरी कड़ी है वो केंद्रित है विदुषी कल्पना जोकरकर पर। कल्पना जी आप बताइए अपनी तालीम के बारे में। सबसे पहले
2: संगीत का वातावरण तो घर में था ही। मेरे पिताजी पंडित कृष्णराव मजुमदार जी जो बहुत उत्तम गायक थे और

0: उस्ताद रजब अली खां साहब के पट्ट शिष्य थे। तो घर में हमेशा ही महफिलों का आमने सामने बैठकर हमको कई कलाकारों को सुनने का मौका मिला, कई कलाकारों का आना जाना होता था, बातचीत होती थी
1: जी।
0: संगीत विषय पर और अलग अलग पहलुओं से संगीत को जानने का मौका मिला
1: जी।
0: और तालीम तो मेरी बचपन से शुरू हो गई थी, मेरे पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया था और बहुत नियमबद्ध तरीके से तालीम देते थे। बेसिकली वो व्यवसाय से इंजीनियर थे, बहुत कठिनाइयों से संगीत की तालीम प्राप्त की और उसको आखिर तक निभाया
1: जी।
0: बहुत अलग अलग प्रकार के कलाकारों के सान्निध्य में वो आए, हमारे घर पे भी कई कलाकारों का आना जाना, महफिलें होती थी, बैठकें होती थी, तो संगीत के क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है
1: जी।
0: करीब 12-15 साल मैंने उनसे तालीम ली और उनके गुजर जाने के बाद मैंने डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया
1: जी।
0: उसमें उन्होंने मुझे ठुमरी के विषय में भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अलग अलग ठुमरियाँ सिखाई, ठुमरी की एक विशिष्ट शैली उन्होंने बताई, कई बंदिशों को सिखाया, बंदिशों में सुरों का लगाव और भाव भावाभिव्यक्ति कैसे की जाए
1: जी,
0: किस शब्द को किस तरह पेश किया जाए, इसके बारे में बहुत अच्छा मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया
1: जी।
0: और मुझे हालांकि पंडित वसंत राजूरकर जी से भी मार्गदर्शन मिला, हैदराबाद में थी मैं मेरा विवाह होने के बाद
1: जी।
0: तो वहाँ उनके संपर्क में आने के बाद उनसे भी मैंने ग्वालियर घराने की कई बंदिशें, अष्टपदियाँ, तराने अलग अलग प्रकार के सीखे और टप्पा गायन शैली भी उन्होंने मुझे सिखाई, कई टप्पे ग्वालियर घराने के सिखाए। तो इस तरह अलग अलग पहलुओं से मैंने संगीत को देखा जाना
1: जी।
0: और फिर कुछ समय बाद अभी कुछ 10-12 साल पहले से बंदिशें बनाने का एक सिलसिला जारी हुआ, शुरू हुआ।
1: तो कितनी बंदिशें आपने रची हैं?
0: कई बंदिशें मैंने तैयार की है उसमें कि आज आपके सामने भी हम प्रस्तुत करेंगे
1: जी। जी,
0: कुछ ठुमरियाँ तैयार की है, कुछ दादरे हैं, कुछ होरी है
1: जी।
0: ये जो उपशास्त्रीय संगीत के जो विविध प्रकार हैं इनमें भी मुझे बहुत रुचि है क्योंकि मैं सुगम संगीत बचपन से गाती आ रही हूँ
1: जी। जी,
0: उपशास्त्रीय संगीत जो है वो शास्त्रीय और सुगम संगीत दोनों का मिश्रण है कह सकते हैं
1: जी।
0: या उसकी छाप उस गायकी पर है, तो मुझे उपशास्त्रीय संगीत भी बहुत पसंद है
1: जी।
0: तो उसमें भी कई बंदिशें मैंने रची हैं
1: जी। तो अभी क्या प्रस्तुत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
0: अभी राग हिंडोल में दो रचनाएं मैंने बनाई हुई हैं क्योंकि सुबह का समय है और उसके बारे में थोड़ा सा मैं चलन बता के और अनुजा वो दोनों बंदिशों का गायन करेगी
1: जी।
0: तो राग हिंडोल ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है
1: जी।
0: इसमें मध्यम तीव्र है और ऋषभ पंचम वर्जित है
1: जी। जी,
0: और निषाद कर्ण स्वर में जो प्रयोग किया जाता है, इसका वादी धैवत और संवादी गंधार है और इस राग की विशेषता है कि मींड और गमक के प्रयोग से इस राग की जो अलग अलग स्वरों की जो स्वरावलियाँ हैं
1: जी
0: वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं। तो हिंडोल जैसे कि इसका नाम है तो उसी पर आधारित मैंने ये बंदिश में उसी का प्रयोग किया है, उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है
1: जी।
0: तो झूलत है कृष्ण मुरारी
1: वाह
0: राधे संग सखियाँ झुलावे,
1: क्या बात है।
0: तो रूपक ताल में ये मध्य लय की बंदिश है, अनुजा आपके सामने प्रस्तुत करेगी और उसके पश्चात एक तराना
1: जी।

0: वाह अनुजा जी, आपने तो मन मोहित कर लिया हम सबका। ये जो बंदिश थी जिसे कल्पना जी ने रची, जिसमें कृष्ण का सखा भाव था, झूले की पींग मार रहे हैं कृष्ण जी और राधा झूल रही हैं, तो वो पूरा चित्रण इस बंदिश में मिल गया हमें, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है, चलने से पहले अपने साजिंदों का भी हम परिचय करा दें। तबले पर संगत की यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनौने जी ने। यति भागवत जी और ज्ञानेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अनुजा जी, आपने इस पूरे प्रोग्राम में जैसे चार चांद लगा दिया, तो आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: कल्पना जी, आपने इस श्रृंखला को प्रस्तुत किया और हमें जो आनंद मिला उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभी श्रोताओं की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं। नमस्कार।
3: नमस्कार। महिला रचनाकारों की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थीं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत की ममता सिंह ने, गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर थे ज्ञानेश्वर सोनवणे। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी? विविध भारती के फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुँचाएं। चलते चलते आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अनुमति दीजिए, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुनीम जी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार SD बर्मन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच पे कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जाने

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म का गाना गीता दत्त और साथियों की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

0: अगला जो गीत है ये आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज़ों में मस्त कलंदर फिल्म का गाना, असद भोपाली के बोल, संगीत है हंसराज बहल का।
1: एक धोखा है ये सब।

अंतराल का समय पूरा हो चुका है और हम हाजिर हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ। अब आपको सुनवाते हैं साहिर लुधियानवी का लिखा और जयदेव का संगीत बद्ध किया ये गाना तलत महमूद की आवाज़ में, फिल्म का नाम जोरू का भाई।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जनक जनक पायल बाजे इस फिल्म का गाना, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार वसंत देसाई।

घर घर में दिवाली, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़क।
1: एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

जो आज ही के दिन यानी 11 मई को इतिहास में घटित हुए। 1998 में आज ही के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए। 2001 में आज ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली को भारत का समर्थन मिला। 2010 में आज ही के दिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश SH कपाड़िया को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 38वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई।

कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को संगीता का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के इस सुविचार से, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे।

और अब जान लेते हैं उन महापुरुषों को जो आज ही के दिन जन्मे। भारतीय हिंदी सिनेमा के दिग्गज पटकथा लिखक सागर सरहदी का जन्म आज ही के दिन 1933 में हुआ। भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई, इनका जन्म आज ही के दिन 1918 में हुआ। भारतीय थल सेना के तृतीय थल सेनाध्यक्ष SH श्री नागेश का जन्म आज ही के दिन 1903 में हुआ।

और अब जान लेते हैं उन विभूतियों को जो आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए। भोपाल सियासत की राजकुमारी एवं भारत की पहली महिला पायलट आबिदा सुल्तान का निधन आज ही के दिन 2002 में हुआ। इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी के बाद रुक करते हैं गीत संगीत की ओर, सुनते हैं फिल्म दाता का ये गाना।

और अब जानकारी लेते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की। नोखा नगर परिषद क्षेत्र में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए 6 पिट निर्माण कार्य तेजी से कराया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1,32,00,000 रुपए है। 3 माह से यह बनकर तैयार हो जाएगा। नगर परिषद की ओर से शहर में बढ़ते कचरे की समस्या को देखते हुए यह पहल शुरू की गई है, जिससे आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। पिट निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में भी उम्मीद जगी है कि अब सड़कों और मोहल्लों में फैले कचरे से राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार नगर परिषद द्वारा चयनित स्थल पर कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण

के उद्देश्य से पिट तैयार किया जा रहा है। इस पिट में शहर से प्रतिदिन निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे का अलग अलग निष्पादन किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इसके माध्यम से कचरे का सुरक्षित ढंग से संग्रहण एवं प्रसंस्करण संभव हो सकेगा, साथ ही आसपास के क्षेत्रों में फैलने वाली दुर्गंध और गंदगी पर भी नियंत्रण मिलेगा।

सूर्यपुरा प्रखंड में उच्च शिक्षा की दिशा में ऐतिहासिक पहल करते हुए पहली बार डिग्री कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग एवं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की स्वीकृति के बाद सूर्यपुरा स्थित राजेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्लस टू मॉडल भवन में नव स्थापित राजकीय डिग्री महाविद्यालय का अस्थायी संचालन होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-30 के लिए नामांकन प्रक्रिया आगामी 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ की जाएगी। भभुआ में यूं तो कैमूर का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ी पर है। पहाड़ी के इन गांवों के आसपास की समतल भूमि पर वर्ष 2020 तक साल में सिर्फ एक ही फसल अरहर के लिए जाने की परंपरा रही है। अब इनमें से कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां श्री अन्न के साथ अन्य फसलों की भी खेती हो रही है। कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों ने इन्हीं पहाड़ी क्षेत्र के कुछ गांवों को गोद लेकर किसानों को तकनीकी जानकारियां देकर उन्हें बेहतर बना रहे हैं। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार के साथ आय की वृद्धि भी अनुकूलता आ रही है। इस साल अगली खरीफ सीजन में इन गाँवों में किसानों के द्वारा 125 एकड़ में मड़ुए की खेती का लक्ष्य रखा गया है। इसकी तैयारी की जा रही है। इस योजना का समन्वय कृषि विज्ञान केंद्र करेगा। खास यह है कि वर्ष 2022 में इन गांवों को कृषि विज्ञान केंद्र ने गोद लेकर यहां श्री अन्य में शामिल मड़ुआ की खेती तकनीकी पर्यवेक्षण में कराया था। अभी इससे प्रेरित होकर अन्य किसान भी मड़ुआ की खेती के लिए उत्साहित हैं।

सूर्य, चंद्र, अग्नि और वायु हमारे प्रत्यक्ष देवता है और इनसे ही सृष्टि की संरचना और निर्वाध संचालन संभव है। इनके द्वारा प्रदत्त तत्व से ही हमारे जीवन का संचरण होता है। प्रखंड के मोथा 52 बीघा के पोखरा पर चल रहे श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ में रविवार को विख्यात संत श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज ने अपने प्रवचन के दौरान यह बातें कही। उन्होंने सूर्य को प्रत्यक्ष देवता और जगत कल्याण में सूर्य के महत्व को बताते हुए कहा कि इनके नियमित उपासना से स्वस्थ जीवन और तेज पुंज की प्राप्ति सहज हो जाती है।

कुछ उसमें बस स्टैंड के समीप थोक सब्जी मंडी से नगर पंचायत के द्वारा एक महीने से कचरा का उठाव नहीं किया जा रहा है। बड़े कारोबारी से टकराव छोटे कारोबारी भुगत रहे हैं। 31 मार्च के बाद नगर हाट सैरात की नई नीलामी नहीं होने के बाद सफाई नगर पंचायत को खुद अपने निजी लोगों से वसूली कर रहा है। नगर पंचायत के विभिन्न वार्डों में सफाई पूरी तरह से चरमरा गई है। रोहतास जिले के चेनारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बरताली गांव के समीप भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण स्थल पर हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक युवक

कैमूर के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि निर्वाचन आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर वर्ष 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों पर पंचायत आम निर्वाचन 2026 संपन्न कराने के लिए आरक्षण निर्धारण को लेकर प्रपत्र 1 के प्रारूप का प्रकाशन किया जा चुका है। आपत्तियों निष्पादन करने के बाद प्रपत्र 1 का अंतिम प्रकाशन 5 जून को होगा। इसके बाद 9 जून को जिला गजट में प्रपत्र 1 का आंकड़ा प्रकाशित होगा। मकान के सूचीकरण के साथ परिवार की जानकारी। कैमूर जिला में जनगणना का काम 2 चरणों में होगा। इसके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। बता दें कि इस दौरान डेटा कलेक्शन का मुख्य काम किया जाएगा। इसमें जनगणना करते हुए बुनियादी ढांचों का डिटेल लिया जाएगा। जनगणना का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चरण में 2 मई से शुरू है, जिसमें 31 मई तक विशेष अभियान में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान घर घर सर्वेक्षण और मकान के सूचीकरण के साथ परिवार के सदस्यों की विस्तृत जानकारी ली जाएगी। जनगणना 2027 पहली बार पूर्णतः डिजिटल माध्यम से होगी। स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी के बाद सुनते हैं एक और गाना फिल्म पत्थर के सनम से।

और अब एक नज़र समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। सीईओ देंगे रजिस्ट्री से 10 दिन पहले जमीन की पूरी कुंडली, इस खबर को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, बिहार में जमीन की खरीद बिक्री में होने वाली धोखाधड़ी और जालसाजी पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। 15 मई से लागू होने वाले इस नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति जमीन खरीदने से पहले उसकी असली स्थिति जान सकेगा। आवेदक की मांग पर संबंधित अंचल अधिकारी या राजस्व अधिकारी को महज 10 दिनों के भीतर जमीन का पूरा इतिहास और वर्तमान स्टेटस बताना होगा। इससे न केवल खरीदार सुरक्षित होंगे बल्कि सालों साल चलने वाले अदालती विवादों पर भी रोक लगेगी। आगे प्रभात खबर की सुर्खी है, नेपाल जाना है तो आधार कार्ड पहचान पत्र अनिवार्य, सीमा पर बड़ी चौकसी। नेपाल में घुसपैठ रोकने के लिए किया फैसला। बताया जा रहा है कि सीमा क्षेत्र में अवैध घुसपैठ व अपराधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के बाद वहां अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या व बांग्लादेशी नागरिकों के नेपाल में प्रवेश करने की संभावना के मद्देनजर घुसपैठ रोकने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 8 विभागों के सचिव समेत 10 आईएएस और 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला, इस खबर को सभी अखबारों ने अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। हिंदुस्तान लिखता है, राज्य में एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के चौथे दिन रविवार को पुलिस प्रशासन के शीर्ष पदों पर बड़े फेरबदल किए गए। इस फेरबदल के तहत 10 आईएएस और 16 आईपीएस और बिहार पुलिस सेवा के एक पदाधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं 2 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। विकास वैभव मगध क्षेत्र गया के आईजी बनाए गए हैं। आगे हिंदुस्तान की सुर्खी है, शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड में बक्सर से एक को उठाया। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड की जांच कर रही एसटीएफ की टीम ने बक्सर में दबिश दी है। टीम मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडेपट्टी निवासी विशाल श्रीवास्तव को अपने साथ कोलकाता ले गई। विशाल के खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में करीब एक दर्जन केस दर्ज हैं, जिनमें हत्या, आर्म्स एक्ट व मारपीट के मामले शामिल हैं। पटना में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े, इस खबर को सभी अखबारों ने सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, राजधानी में सीएनजी और पाइप्स नेचुरल गैस उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। गैस कंपनियों ने घरेलू, वाणिज्य और औद्योगिक श्रेणी की गैस दरों में वृद्धि कर दी।

है, नई दरें 9 मई से प्रभावी हो गई है। आगे दैनिक जागरण की सुर्खी है, तमिलनाडु में अभिनेता विजय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। तमिल सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता जोसेफ विजय के तमिलनाडु की सत्ता संभालने के साथ ही राज्य के राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है।

और अब एक नज़र आर्थिक एवं खेलकूद जगत से। रोज़मर्रा की वस्तुएं हो सकती हैं महंगी। कच्चे माल की बढ़ती कीमतों के कारण देश की बड़ी FMCG कंपनियां अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने पर विचार कर रही है। इससे आने वाले दिनों में साबुन, डिटर्जेंट, बिस्किट पैकेट, बंद खाद्य पदार्थ और पेय उत्पाद आदि महंगे हो सकते हैं। चेन्नई ने चेपॉक पर लखनऊ को चित्त किया। चेपॉक स्टेडियम में रविवार को क्रिकेट प्रेमियों ने T20 के रोमांच का पूरा मजा लिया। उतार चढ़ाव भरे मैच में अंत तक चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स दोनों जीतते नजर आ रहे थे। उर्विल पटेल ने इस दौरान IPL के सबसे तेज 85 का रिकॉर्ड बराबर किया। फिर अंत में शिवम दुबे ने आखिरी ओवर में एडन मार्कम पर दो गेंदों पर दो छक्के मारकर टीम को 5 विकेट से जीत दिला दी। इस जीत के साथ ही टीम ने प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत भी किया। और अब एक नज़र मौसम की जानकारी पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 9 से 13 मई के दौरान जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% और दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। और आज के इस अंक में यहीं तक। कल नए खबरों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त अपनी रेडियो दोस्त संगीता को। नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। समाचार प्रभात सुनने के लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: प्रभात।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75

0: वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीर जी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और ₹75 का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
2: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम

0: यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
1: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गयी है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
2: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-3104-81, 011-23-7171-06। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती।

0: तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए उपकार फिल्म का गाना।

देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उपकार फिल्म का गाना। पेश है श्रोताओं के फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी।

सौदागर फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाज़ थी मनहर, कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर की। आनंद बख्शी की रचना थी, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाने की फरमाइश की थी मोहल्ला पोस्ट खुर्द जाफराबाद जिला जालना से सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, जगुताई राजे यादव, साक्षी ताई राजे यादव, संचित वायल आरेगांव, चिरंजीत प्रथमेव दशमुख मोताला, स्वामी देशमुख करड़ा, प्रणाली देशमुख मोताला, कुमारी सानवी देशमुख करड़ा एवं समस्त राजे यादव वायल देशमुख परिवार। इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्ल्यू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां और उल्लाह अकरम नूरजहां। राजनांदगांव से याकूम आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा और इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म हमराही से, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी। हजरत जयपुरी की रचना है, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। इस गाने को सुनना चाहा है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वाड़कर, राही सरिता ग्वाड़कर, प्रिंस एकांश ग्वाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वाड़कर, पड़िता ग्वाड़कर, अर्जुन ग्वाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वाड़कर, सुमित ग्वाड़कर और कुमारी ध्वनि ग्वाड़कर। इसी गाने की फरमाइश की है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

0: वो भी ऐप से।
1: फसा। अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: काली टोपी लाल रुमाल, इस फिल्म का गाना भी आपने सुना। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना थी, धुन बनाई थी चित्रा गुप्ता ने। इस गाने को सुनना चाहा था छत्तीसगढ़ भाटापारा ततरिंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। गोकुल चौक गंगजला सहरसा से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, राकेश रंजन, राजीव रंजन और संजय कुमार विद्यार्थी, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम कुमारी साक्षी। बुल्की वाली झलना झा नया नगर सुपौल से श्वेता रंजन, पप्पू, रजनीश कुमार, आनंद कुमार, आशुतोष कुमार, अमिताभ कुमार, गजेंद्र कुमार निराला। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म 20 साल बाद, आवाज़ हेमंत कुमार की। शकील बदायूं के बोल हैं, धुन बनाई है हेमंत कुमार ने। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबा से भाई कारे राय कारे, श्रीमती मीना कारी, पुंजराज आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री पिंकी, रिंकी रिक्की, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और जयंत कुमार बैरागी। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहिनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी। जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौशल, डॉक्टर इशिता साहिनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनल वली और मोहम्मद अफजाल मलिक।
1: जरा नजरों से कह दो जी,

0: हम पे क्यों इस कदर बिगड़ती हो।
1: इसी गीत के साथ कार्यक्रम पसंद आपकी अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत अपनी रेडियो सखी संगीता को, नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले करेंगे।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: इधर आइए, इधर।
7: इधर?
6: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
8: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
7: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
8: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
7: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222542। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
8: शुभ

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए सहयोग पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट की जल्द होगी शुरुआत। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से भी इसमें सहयोग की अपील की।
1: हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नागरिकों से वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था फिर शुरू करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की, क्योंकि देश बढ़ती वैश्विक ऊर्जा लागतों से आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री की यह अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और हुर्मुज जलडब्रू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल हो गई है। पड़ोसी देश नेपाल में लगातार चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के बाद भारतीय सीमावर्ती क्षेत्र के पेट्रोल पंपों पर नेपाली नागरिकों की भीड़ देखी जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अररिया में पेट्रोल की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए आज से सहयोग पोर्टल की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय से इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सहयोग पोर्टल आम लोगों की शिकायतों को पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से निपटाने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने, स्थिति की जानकारी लेने और रिमाइंडर भेजने तथा प्रतिक्रिया देने में आसानी होगी। इस पोर्टल पर परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिन के अंदर उनका निष्पादन कर आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज

0: पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण करेंगे। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस पथ से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव ने बताया कि जमीन निबंधन कराने के समय में आवेदकों को 13 प्रकार की जानकारी मिलेगी। उन्होंने बताया कि जमीन की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण निबंधन के बाद विवाद नहीं हो, इसलिए यह व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट तैयार की गई है, जिसके जल्द ही शुरू होने की संभावना है। राज्य की सभी चीनी मिलों को गन्ना यंत्रीकरण योजना के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर सर्विस CHCS संचालित करना होगा। वर्तमान में सिर्फ 3 चीनी मिलों ने CHCS स्थापित किए हैं। गन्ने की खेती के रकबा विस्तार के उद्देश्य से चीनी मिलों को CHCS की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। गन्ना उद्योग विभाग के अनुसार कृषि विभाग और जीविका द्वारा स्थापित CHCS में गन्ना फसल से संबंधित विशेष कृषि यंत्रों की कमी भी चिन्हित की गई है। गन्ना विभाग के अधिकारियों और चीनी मिलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में गन्ना संबंधित कृषि यंत्रों की आवश्यकता का आकलन कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, साथ ही इन सूचनाओं के आधार पर शीघ्र समेकित रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। राज्य में मॉनसून से पहले 45,000 पुल पुलियों की जांच की जाएगी। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार जांच का निर्देश कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया है। इस विशेष निगरानी अभियान में अनियमितता या गड़बड़ी करने वाले अभियंताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी पटना में पाइप्ड नेचुरल गैस PNG और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं। नई दरों के अनुसार घरेलू PNG की कीमत 50 पैसे बढ़कर 49.94 रुपये हो गई है, वहीं व्यावसायिक PNG की कीमत बढ़कर 93.27 रुपये प्रति SCM हो गई है। औद्योगिक PNG के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इधर CNG की दर 1 रुपये बढ़कर 89.90 रुपये प्रति किलो हो गई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में अगले एक सप्ताह तक आंधी बारिश की स्थिति बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का पूर्वानुमान जारी किया है।
2: दिनांक 11 मई राज्य के उत्तर मध्य, उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के जलालगढ़ में सबसे अधिक 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, वहीं लखीसराय के चानन में 32.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर राज्य में बाढ़ संकट प्रबंधन टीमों का गठन कर इन्हें सक्रिय किया जाना चाहिए। श्री शाह ने संभावित बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों के लिए नई दिल्ली में आयोजित समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग

से देश के केंद्र शासित और राज्य सरकारों को बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने की योजना पर काम करने का निर्देश दिया। पूर्व मध्य रेल बिहार से बेंगलुरु के लिए एक विशेष ट्रेन का परिचालन करेगा। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि 14 मई से 12 जुलाई के बीच सहरसा और यशवंतपुर के बीच विशेष ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। वहीं पूर्णिया कोट और सहरसा से आनंद विहार के लिए चल रही ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है। वहीं दानापुर मंडल के मोकामा रेलवे स्टेशन के पास स्थित पश्चिम संपार फाटक को बंद कर सो जाने वाले गेटमैन को रेलवे ने निलंबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ हत्याकांड मामले में एसटीएफ की टीम ने बक्सर जिले से एक व्यक्ति विशाल श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया है। बक्सर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पांडे पट्टी निवासी विशाल पर एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं और पीए हत्याकांड मामले में उसकी संलिप्तता पाई गई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक ने विशाल की गिरफ्तारी का स्पष्ट कारण नहीं बताया है। समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता ने कहा है कि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र शिवहर पहुंचने पर डॉ. श्वेता ने यह बात कही। पूर्वी चंपारण जिले में जीआरपी ने तस्करी के लिए भागलपुर ले जाए जा रहे 21 बच्चों को मुक्त कराया है। रेल पुलिस थानाध्यक्ष भरत प्रसाद ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अररिया जिले के ताराबाड़ी थाना क्षेत्र के बीडी चौक के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 41 लीटर नेपाली शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। कटिहार जिले के कुर्सेला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 20 किलो गांजा के साथ एक महिला समेत दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। आईपीएल में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल रात रायपुर में खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। इससे पहले दिन के एक अन्य मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। गुजरात का प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने राज्य में आईएएस अधिकारियों के तबादले पर लिखा है, पुलिस और प्रशासन के शीर्ष अफसरों को नई जिम्मेदारी। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, राज्य में निगरानी कैडर समाप्त, बिहार पुलिस में समायोजित होंगे इसके अधिकारी। प्रभात खबर ने नेपाल सरकार की ओर से जारी एक आदेश पर लिखा है, नेपाल जाना है तो आधार कार्ड पहचान पत्र अनिवार्य, सीमा पर बढ़ी चौकसी। दैनिक जागरण लिखता है, तमिलनाडु में विजय ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रीय सागर ने लिखा है, ईरान ने समुद्र में 3000 बैरल तेल बहाया, देश के पास तेल स्टोर करने की जगह कम पड़ी। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार के सभी जिलों में पीपीपी मोड पर खुलेंगे चार्जिंग स्टेशन, हर जिले से पटना के लिए चलेगी सरकारी बसें। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना न खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए सहयोग पोर्टल का लोकार्पण करेंगे। राज्य में भूमि खरीदने वालों को निबंधन से पहले ही भूमि की पूरी जानकारी मिलेगी। जमीन निबंधन के लिए मोबाइल यूनिट की जल्द होगी शुरुआत। और मौसम विभाग ने आज अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही

0: आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 84.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वही ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: इधर आइए, इधर।
5: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
6: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
5: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
6: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
5: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना।
7: हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
6: शुभ वाणी,
5: लाभवाणी,
6: आकाशवाणी।

एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। पेश है शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 9:10 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका। कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य आपको सुनवाएंगे 10:05 पर। एल्बम भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी लेकर हम हाजिर होंगे 10:30 पर। भोजपुरी एल्बम गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा रस्तार सुनिएगा 10:45 पर।

शाम का स्वागत कीजिए भक्ति संगीत कार्यक्रम से। कार्यक्रम होगा वंदन, समय होगा शाम 5:10 पर। महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन लेकर हम हाजिर होंगे 5:30 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर का समय होगा 6:00 से। भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत हम पेश करेंगे 6:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद हम प्रस्तुत करेंगे 7:00 से। ईमेल आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:50 पर। कार्यक्रम होगा ई मनपसंद।

भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा हम पेश करेंगे रात्रि 9 बजे से। बंदगी कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर। एल्बम गीतों का कार्यक्रम रसरंग का समय होगा रात्रि 10 बजे से।

अभी आप जानकारी ले रहे थे शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत मालिका।

साथी फिल्म का गाना भी आपने सुना, आवाज़ें थी मुकेश और सुमन कल्याणपुर की। गुलाम महमूद की रचना थी, धुन बनाई थी नौशाद ने। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म पत्थर के सनम, गायक कलाकार मुकेश, मजरू की रचना है, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मुकेश की आवाज़ थी, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत था, फिल्म का नाम कन्हैया। कार्यक्रम का अगला गीत सिलसिला फिल्म से आवाज़ें किशोर कुमार, लता मंगेशकर की। गीतकार राजेंद्र किशन, संगीतकार शिव हरी।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम गीतमालिका अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले करेंगे।

0: तो ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार।

0: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे ही मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज की गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे, और इसकी कंपटीशन थी। और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज़ उसके लिए रखा गया था, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे। तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा, और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्न विकाई चीत, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद देलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद देलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्धसत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्धसत्य काफ़ी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानें।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्धसत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई, वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो, स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे लेकिन

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देख ये किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा, चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है, किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। हाँ। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए, इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी

0: बेटी को छुड़ाने आया है। क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी, इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
1: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
0: रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब।
2: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए। और मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले ले। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
4: अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, साले उन बदमाशों को यही एक दुकान मिले लूटने के लिए।
5: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
4: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
5: अच्छा अच्छा,
4: आ गया हसमुख, आ गया, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वहां का रहा दोस्त, घबराना नहीं।
6: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
4: पागल हो गया, पागल हो गया, ए भगवान, मेरा दोस्त पागल हो गया।
6: अरे पागल नहीं बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
4: कैसे?
6: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
4: क्या?
6: हाँ।
4: किसको?
6: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था, उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
4: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए आंडो पांडो।
5: यस सर।
4: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
7: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्या मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
4: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा, जीना तो छोड़ो पीने नहीं देगा।
2: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।
8: ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ओ काले कुर्ते

0: ये जाए।
1: उली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे।
1: प्रधानमंत्री की ये अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास व्यवधान के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें लगभग $70 प्रति बैरल से बढ़कर लगभग $126 प्रति बैरल हो गई है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से विवेकाधीन खर्चों पर पुनर्विचार करने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खाद्य तेल की खपत कम करने और किसानों से विदेशों से आयातित रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और ₹75 का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश

0: शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का निरंतर ध्यान प्रतिभाओं को सशक्त बनाने, अनुसंधान को प्रोत्साहित करने और राष्ट्रीय प्रगति तथा नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा वाले समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार कई परिवर्तनकारी पहलों के माध्यम से नवाचार क्षमता का उपयोग करते हुए भारत के विकास को गति दे रहा है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य।
2: श्रोताओं, हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त चंदा। श्रोताओं, आज हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के एक साइलेंट हीरो की, जो बिना रुके बिना थके दिन रात हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में लगा रहता है, और वो है हमारा लीवर। तो लीवर से संबंधित हमारे आज के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आर के पटेल। हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, निदेशक ऑफ साईनाथ हॉस्पिटल सासाराम रोहतास बिहार। मैं एमएस जनरल सर्जरी से हूं और मेरा स्पेशलाइजेशन लीवर एवं पेट रोग से है।
2: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे लीवर के बारे में। तो लीवर क्या है और ये हमारे बॉडी में कैसे काम करता है?
3: देखिए, लीवर हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण अंग है जो कई तरह से हमारे बॉडी में काम करता है, जिसमें हमारे सारे वही से सोर्सेस प्रोवाइड कराते हैं। जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस का कार्य यही से होता है, मेटाबॉलिज्म का काम यही से होता है, और शुगर का भी ये करता है, और प्रोटीन का भी इम्यूनिटी सिस्टम सारे ये डेवलप करते हैं। इम्यून में जैसे डिटॉक्सिक का होता है और प्रोडक्ट ऑफ बाइल का, सारे सोर्सेस यही से हमारे लीवर से संचालित होते हैं।
2: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि लीवर जो है वो हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि लोगों में लीवर की बीमारियाँ काफी तेजी से बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है?
3: देखिए, ये आजकल कॉमन रीजन ये हो गया है कि हमारे जो इस समय के खान पान में ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, फास्ट फूड जंक फास्ट खाते हैं, इससे हमारे लीवर को क्षति पहुंचता है, क्योंकि हम तेल मसाला और उल्टा सीधा जो खाते हैं, जैसे फास्ट फूड है, चाउमीन, छोला, बर्गर, पिज्जा, सारे चीज़ खाते हैं, गोलगप्पा खाते हैं, ये सब चीज़ हमारे लीवर को नुकसान पहुंचा।
2: यानी कि फास्ट फूड की बात
3: है, हम खाने पीने में अगर ध्यान नहीं देते हैं तो लीवर को डैमेज करता है।
2: सर, हमारा एक सवाल ये भी है कि क्या हमको पता चलता है कि हमारा लीवर खराब हो रहा है, मतलब कि बिना किसी टेस्ट के घर पर ही क्या कुछ लक्षण ऐसे दिखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा लीवर खराब होना शुरू हो गया है?
3: देखिए, कॉमन सी बात यह है कि हम घर में हैं, बिना टेस्ट के हम जान सकते हैं कि हमें लीवर की बीमारी है या नहीं है। जैसे कॉमन हमको हल्का बुखार रहेगा, वीकनेस रहेगी, और पेशाब पीलापन होगा, आंखें भी पीली होती है, जिससे हम घर में आमतौर पर समझ जाते हैं कि मुझे पीलिया की समस्या।

0: लग रही है और हम फर्दर उसके प्रति एक्शन लेते हैं।
1: यानी कि हमें अगर इस टाइप के कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए।
0: जी हाँ, क्योंकि उसके बाद हम सारे टेस्ट कराते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट कराते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, उसमें सारे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन बिना टेस्ट कराए हुए हम घर पे आमतौर पे जान जाते हैं लक्षण से कि इसको ये बीमारी है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हम यहाँ अब फैटी लीवर की बात करते हैं, तो फैटी लीवर क्या है? इस बीमारी के कितने स्टेज होते हैं?
0: देखिए, फैटी लीवर क्या है कि जो हमारे बॉडी में लीवर में मेटाबॉलिज्म का जो जमा हो जाता है, कोशिकाओं में जो फैट का जमा हो जाता है, जिससे हमारा इक्यूमुलेशन शांत हो जाता है, इसे हम फैटी लीवर कहते हैं। और
1: इसके स्टेज कितने होते हैं?
0: इसके स्टेज चार पांच होते हैं, जो हमारा हेपेटाइटिस का होता है और सिरोसिस का होता है, फैटी लीवर। ये इसमें भी कई होते हैं, जैसे हमारा हेपेटाइटिस को हेपेटाइटिस में कई आते हैं, हेपेटाइटिस बी आता है, हेपेटाइटिस सी आता है, हेपेटाइटिस ई आता है, और जिससे कि सिरोसिस में भी लीवर फेल हो जाता है। इसके आगे भी बहुत से कारण हैं, जिससे कि हमको जाना पड़ता है, सीटी स्कैन, एमआरसीपी सारे चीज कराने पड़ते हैं। तो हमको कई इसमें ये काज है कि जिसके कारण से ये होता है, और इसके तीन चार तरह की लक्षण होते हैं जो स्टेज का साक्ष्य करता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने इन सब बीमारियों के बारे में बताया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस के बारे में, तो इसके भी लक्षण कुछ अलग अलग होते हैं। लीवर के साथ इसका कनेक्शन क्या होता है?
0: देखिए, लीवर के साथ इसका कनेक्शन है कि जो हमारे सेल होते हैं उसको थोड़ा ये इम्यूनिटी पावर को वीक कर देता है, जिससे हमारे लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं करते हैं। तो हमें इसके प्रति लीवर का ध्यान रखना चाहिए और अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए।
1: सर आपने ये बताया, बहुत अच्छी बात। अच्छा, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर पेट दर्द लीवर की समस्या से ही संबंधित हो?
0: नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है कि हर पेट दर्द लीवर का ही समस्या है। कई कारण होते हैं, जैसे गैस्ट्राइटिस होता है, इंट्रोकोलाइसिस होता है, इंट्राइटिस होता है, कई से रीजन है कि जो पेट दर्द हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, तो इसका कारण ये भी है।
1: अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अत्यधिक दवाइयों का सेवन भी लीवर को डैमेज कर सकता है।
0: जी हाँ, अत्यधिक दवाई भी लीवर को डैमेज करता है। जैसे हम पावर ज्यादा यूज करते हैं दवाइयों में, तो उससे क्या है कि लीवर का टॉक्सिसिटी थोड़ा कम होता है, जिससे कि हमारे लीवर को डैमेज करता है। हमें दवाइयों का डोज सही से लेना चाहिए और ज्यादा पेन किलर का यूज नहीं करना चाहिए।
1: बहुत लोगों की आदत होती है कि अगर उन्हें किसी तरह का दर्द होता है तो वो डॉक्टर की सलाह नहीं लेते हैं, बल्कि हमेशा पेन किलर का सहारा लेते हैं, तो उससे भी वो हमारे शरीर पर काफी इफेक्ट करता है।
0: जी हाँ, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि ज्यादा दर्द की दवाइयाँ खाने से लीवर, गुर्दा सारे चीज डैमेज होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, पीलिया यानी कि जॉन्डिस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे लीवर को कितना प्रभावित करता है?
0: देखिए, पीलिया हमारे लीवर को पूरी तरह से प्रभावित कर देती है। जैसे कि क्या होता है ना कि हमारा बाइल लीवर में कलेक्ट होने लगता है, जिसके वजह से पीलिया होती है। तो अगर बाइल लीवर में कलेक्ट होगा तो ये एकदम लीवर के लिए अच्छी बात नहीं है, तो लीवर हमारी पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। इसलिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लीवर संबंधित जरा सा भी कुछ भी लगे तो हमें डॉक्टर से सब परामर्श लेना चाहिए और पीलिया को नहीं होने देना चाहिए, फैटी लीवर नहीं होने देना चाहिए।
1: सर, बातें हम और भी आगे इस विषय पर करेंगे, लेकिन यहाँ आपकी पसंद का हम गीत जानना चाहेंगे, तो अपनी पसंद का कोई गीत बताइए।

0: डॉक्टर साहब, हमारे जो श्रोता हैं वो जानना चाहते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो लीवर को खराब कर देती है, यानी कि हमारी जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारे जीने का तरीका कितना प्रभावित करता है।
1: देखिए, हमारे जीवन में खान पान का बहुत बड़ा रोल होता है, जिससे हम खाने पीने में ध्यान नहीं देते। तेल, मिर्च, मसाला, फास्ट फूड, जंक जो खाते हैं वो हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, जिससे हमको ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और आती है जो हम आजकल बहुत ज़्यादा उसके आदि होते हैं, जो कि नशा, जैसे ड्रिंक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, ये सब चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए, जिससे हमारे लीवर को किसी तरह से कोई खराबी ना कर सके। तो हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
0: तो साहब, जैसे कि अभी आजकल घर के मसाले की अगर हम बात करते हैं, तो लोग अधिकांशतः देखते हैं घर के मसाले की जगह पर इस्तेमाल होता है पैकेट के मसाले। तो पैकेट के मसाले भी अगर हम रोजाना अगर हम लेते हैं अपने खान पान में, तो वो भी हमारे पेट को काफी नुकसान पहुंचाता है। अगर अब कहा जाए तो अगर रेगुलर हम सब्जियां डालते हैं तो पेट खराब होने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो भी उससे भी लीवर काफी नुकसान पहुँचता है।
1: जी हाँ, देखिए, हम जो घर की बात करते हैं मसाले के, घर के मसाले जो

0: खड़े मसाले होते हैं वो चीज़ अच्छा होता है, उसे हमें सेवन करना चाहिए। घर का तेल होता है जो कुल्लू में पेर के आता है, वो तेल भी यूज करना चाहिए। मार्केट का चीज़ें जो मसाला होता है और तेल होता है, ये सब अच्छे नहीं होते हैं, वो सब हमारे लीवर को पूरी तरह से डैमेज करते हैं। तो हमें सावधानियां रखना चाहिए कि घर के मसाला और तेल का यूज करें तो हमारा लीवर निश्चित तौर से ठीक रहेगा।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आपने सीरियोसिस बीमारी के बारे में बताया, तो वो क्या है और इसके भी लक्षण क्या होते हैं?
0: देखिए, ये तो सीरियोसिस बहुत लास्ट स्टेज की बीमारी है जिससे लीवर काम नहीं करता है। अब हम बात करते हैं, लीवर काम नहीं कर रहा इसका मतलब हमारा लीवर फेल हो चुका है। तो इस कंडीशन में हमारे पेट में पानी होता है और जरा सा भूख नहीं लगेगा, तो इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि इतना कंडीशन को हमको पहुंचने नहीं देना चाहिए। तो इसमें बहुत सी चीज हो जाती है, आगे हम फर्दर अल्ट्रासाउंड सीटी और एमआरसीपी करके कारण का पता करते हैं कि कहाँ कितना डैमेज हुआ है। तो इसमें मूलतः हम बात कर रहे हैं लीवर सिरोसिस के लिए। तो लीवर सिरोसिस में इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर एंड जो सेल होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण हमारा लीवर सिरोसिस होता है। इसमें एडवांस स्कैनिंग होती है लीवर के लिए और ट्रीटिंग मैनेजिंग होता है मेटाबोलिन इशू थ्रू स्टेनेबल वेट लॉस, जिसमें हमारे बॉडी में इसके कारण से कोलेस्ट्रॉल का भी बढ़ना हो जाता है और जिससे लीवर पूर्ण रूप से डैमेज हो जाती है, तो इसी को हम लीवर सिरोसिस कहते हैं। और जो है इसमें ब्लड टेस्ट और फाइब्रो स्कैन करते हैं, फर्दर कुछ आता है तो बायोप्सी वायोप्सी करके इसका हम क्लियर करते हैं और लीवर प्रोटेक्टिव सारे ट्रीटमेंट देते हैं।
1: और अब आइए डॉक्टर साहब की पसंद का एक और गीत सुनते हैं।

0: अच्छा डॉक्टर साहब, लीवर को डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है ताकि हमारा जो लीवर है वो स्वस्थ रहे? लोगों को आप क्या परामर्श देंगे?
1: लीवर को डिटॉक्स करने के लिए हमें खाने पीने में विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि जो लीवर डिटॉक्स होता है। हम खाने पीने और ड्रिंक का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे तो हमारा लीवर प्रॉपर वर्क करता है, फंक्शन करता है। और जो डेली रूटीन का चीज हम लोग खाते हैं उसका भी हमें सही मात्रा में यूज करना चाहिए, वो डाइटिंग नहीं करना चाहिए, तो जिससे हमारा लीवर सही रहता है और अच्छा प्रॉपर वर्क भी करता है।
0: कोई ऐसा पल, ऐसा क्षण जो आपके पास क्रिटिकल कंडीशन में कोई पेशेंट आया हो, आप उसे कैसे ट्रीट किए हो, कोई एक ऐसा पल बताइए।
1: देखिए, हम लोग के यहाँ तो नॉर्मल हर तरह के पेशेंट आते हैं, तो पेशेंट के कंडीशन को देखते हैं, जनरली उसका चेकअप करते हैं, चेकअप करके उसको पूर्ण रूप से जो चाहिए उसका निदान करते हैं। हम देखते हैं उसको, बीपी भी देखते हैं, पल्स देखते हैं और सारे इन्वेस्टिगेशन करके देख लेते हैं, जो उसको नीड रहता है उसका निदान करते हैं, जिससे मरीज को आराम मिलता है।
0: लीवर से संबंधित सारी समस्याओं पर आपने बहुत अच्छे से, बहुत विस्तार से, पूर्ण रूप से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैडम।
0: अगर हम अपनी आदतों को सुधार लें तो कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ अपनी रेडियो दोस्त चंदा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वर एवं संकलन चंदा देवी, प्रस्तुतकर्ता संतोष कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में।

0: हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है भोजपुरी एल्बम लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।
1: अरे छोड़ी गई ले रे

लोकमाधुरी कार्यक्रम में आप सुन रहे थे भोजपुरी एल्बम गीत, आवाज थी भरत शर्मा व्यास की। रसधार कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भोजपुरी एल्बम गीत।

आवाज़ है सूरज मिश्रा व्यास की, शशिकांत तिवारी की रचना है, धुन बनाई है नीलेश चौरसिया ने। एल्बम का नाम कहवा बड़ा ए विधाता।

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

आवाज़ है रविंद्र सिंह ज्योति की, विमल बावरा की रचना है, धुन बनाई है अनमोल अनिल ने। एल्बम का नाम आओ माई।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन का प्रसारण, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं, विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक जगत की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को। द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
2: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं सुनिर्णं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important

0: Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
1: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्र घट यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं, सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपनी वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
2: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
1: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं? तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण,
2: जी
1: अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्तुति मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। तो निराकार का अर्थ क्या है? दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है।
2: जी
1: अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है? क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है, अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए।
2: जी
1: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब
2: जी
1: चंद्रमा, चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है, इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है।
2: जी
0: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable

0: Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the Somnath Mandir.
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से, और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला, हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं, ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है, और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी, और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था, उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
0: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तः

विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः।

विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिव संकल्पमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च।

विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सुमुखश्च एकदन्तश्च।

0: विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
2: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं, वहाँ से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक पे जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं, या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है, उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है, जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या है? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया, और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत हमें शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम कारण यदि समझ सकें, तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण यह त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है, उसे रजोगुण की संज्ञा

0: दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है। मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर। सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा।

0: है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं, और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में, और वायुसेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of rupees 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy. Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jaipal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions. It is said that Raja Bhoj too helped with the construction. Karna Dev and Siddharaja Jaisimha played a pivotal role in restoring Gujarat's political and cultural strength. Bhava, Brihaspati, Kumarapal Solanki and Pashupal Acharyas rebuilt and sustained the shrine as a great center of worship and learning. Vishaladev Vaghela and Tripurankara protected its intellectual and spiritual traditions. In the 1940s, when the spirit of freedom swept across India and the foundations of a new republic were being laid under the leadership of towering figures like Sardar Patel, one thing continued to trouble Sardar Patel deeply: the condition of the Somnath Temple. On the 13th of November 1947, during Diwali, he stood next to the dilapidated ruins of the temple with seawater in his hands and said, "On this auspicious day of the Gujarati New Year, we have decided that Somnath should be reconstructed." He asked the people of Saurashtra to do their best. This was a holy task in which all should participate, and on his clarion call, it was not only the people of Gujarat but also the people of entire India that responded enthusiastically.
0: और इसीलिए हम कहते हैं कि इतिहास का एक सूत्र थामे है, सोमनाथ मंदिर हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है। आयोजन का विवरण हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, आइए आपको सुनवा रहे हैं एक भजन।

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed! And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं उ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो मुख में, गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के, पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति, हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
2: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
0: जी।
2: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं, तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाए तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहां हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, पुराणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
0: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियां बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देखकर यहां उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से

0: रहे और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं, और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: Yes, you are absolutely right. And incidentally, Neelam, today is the very day that the first president of India, Dr. Rajendra Prasad, had inaugurated the reconstructed Somnath Temple on the 11th of May 1951. And Dr. Rajendra Prasad had on that occasion said that the Somnath Temple proclaims to the world that anything with unparalleled faith and love cannot be destroyed. He expressed the hope that the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade, and as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat, Shrestha Bharat.
0: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है। जो धार्मिक स्थल हैं, इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं, उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है, ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं, और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहें, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं, वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें। अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं, ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें। जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं। ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग है उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं, अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें। और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है, उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है। और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक

0: AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. Benchmark domestic equity indices were trading around 1% lower in forenoon trade today amid weak global cues. The Sensex dropped 864 points to 76,464, while the Nifty dipped 240 points to 23,936 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस विशेष प्रसारण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रांगण में इस समय भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमा में उपस्थिति इस कार्यक्रम में है और इस पूरे आयोजन के हिस्से के तौर पर अलग अलग कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें कलश यात्रा शामिल है, भजन संध्या है, ओमकार मंत्र का जाप है, सोमनाथ पुस्तिका में मंत्र लेखन से लेकर सोमनाथ से जुड़ी कथाओं का वाचन तक है। और ये 8 तारीख से शुरू हुआ कार्यक्रम आज 11 मई अब ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी ने विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन किया है, साथ ही जो कलश है उसके माध्यम से जलाभिषेक किया गया है, कुंभाभिषेक उसे नाम दिया गया। जो पताका है वो मंदिर को अर्पित की गई है, ध्वजारोहण कहा गया है और वायुसेना की जो सूर्य किरण टुकड़ी है उसने एक्रोबेटिक करते हुए उसके जो यान है अलग अलग आकृतियां बनाई हैं, पुष्प वर्षा मंदिर पर की है। माननीय प्रधानमंत्री जी विशेष प्रतीक चिन्ह जो हैं उनको देखते हुए एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो सोमनाथ से जुड़े हुए विभिन्न प्रसंग हैं उनको दर्शाया जा रहा है। और एक बात हमारे श्रोताओं के मन में आ रही होगी, अक्सर जब हम भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो उपवास को उनके साथ जोड़ा जाता है विभिन्न अवसरों पर। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष हैं, हमारे विशेषज्ञ। आइए डॉक्टर आशुतोष से हम जानते हैं कि उपवास का महत्व क्या होता है, कैसे करना चाहिए।
2: वैसे तो केवल शिव जी की जो हम पूजा करते हैं उसी भी नहीं, किसी भी प्रकार की पूजा में, चाहे वैष्णव रीति हो, शैव रीति हो या शाक्त रीति हो, उपवास का महत्व होता ही है। लेकिन अब हम उपवास को लेते हैं तो उपवास का एक विशेष महत्व है। क्या है कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है। तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है। वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पे प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
2: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
2: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है, तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
2: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना, एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसेद अंतरिक्ष नाभि, अर्थात

0: हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सह लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन प्राण, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं, इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है, जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे चार प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन चार प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर, तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए, नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं, लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके बाद जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में, प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं
1: जी। एक और प्रश्न है, अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है भले ही वो छोटा मंदिर हो लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग, यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है
1: जी।
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं
1: जी। यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है
1: जी।
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले
1: जी।
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के

0: शक्ति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखे तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैन मेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है। और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में। तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है, जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस। सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी, जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया। तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मतांतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयोवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग। या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें, भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है।
1: जी,
0: इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
2: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhaspatan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: मंच पर उपस्थित हैं। साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया और साथ ही अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
1: Minister in Gujarat government, Shri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the Lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a Kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have now seen a garland being presented to the Honorable Prime Minister by the organizers, and people have been waiting since a long time to hear the Prime Minister, and the Honorable Prime Minister will be addressing the gathering very soon.
0: और कौशल जी, मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूंगी कि जब हम बहुत दूर से यात्रा करके जाते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग जो है उनमें से किसी भी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो बहुत अधिक भक्ति भाव से भरे होते हैं। तो जो लोग उसी स्थान पर रहते हैं वो अपने आप को बेहद भाग्यशाली मानते होंगे, और इस समय जो ये विशाल जनसमूह हम देख रहे हैं इसमें ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मंदिर की सेवा में भी लगे होते हैं, वो कार्यकर्ता होते हैं, और इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से मंदिर के विशेष कार्य जो हैं वो करते हैं। और यहाँ पर हम इस समय देख पा रहे हैं उत्साहित जनसमूह है, माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति से आयोजन और भी भव्य, और अब स्वागत उद्बोधन यहाँ पर
2: विश्वना सौथी वधु लोकप्रिय नेता अने यशस्वी वडाप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहेब, मारा साथी नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, मारा साथी सौ मंत्रीश्रीओ, सांसद श्री सोमनाथ ट्रस्टना ट्रस्टीश्रीओ श्री जेडी परमार, श्री पीके लहरी, श्री हर्षवर्धन नोहटिया, श्री विशद भाई मफतलाल, आमंत्रित सर्वे महानुभाव, प्रेस मीडिया ना मित्रों, सौ ने मारा नमस्कार। विश्वना सौथी अधिक लोकप्रिय नेता अने आपड़ा लोक लाड़ीला वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी नू हूँ हृदय थी खूब खूब स्वागत करू छू। समग्र देश अने दुनिया नी नजर जे राज्य नी चूंटणी पर हती ते पश्चिम बंगाल सहित आसाम अने पोंडिचेरी में पण विकास नी राजनीति ने मड़ेला प्रचंड जन समर्थन ना शिल्पी यशस्वी वड़ाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब ने समग्र गुजरात की जनता जनार्दन वती खूब खूब अभिनंदन पाठवू छू। भगवान सोमनाथ नु मंदिर सदियों थी देश की आस्था संस्कृति अड़क संकल्प ने पुनर्जागरण नु जीवंत प्रतीक है। अपनी आस्था ना अजय अने अतूट प्रतीक आ मंदिर ने ध्वंस करवाना अनेक प्रयासों थया अने दरेक विनाश पछी सोमनाथ भगवान नु मंदिर फरी

0: तेजस्वता साथे उभू थयु छे। आजे आ दिव्य मंदिर विध्वंस माथी पुनर्निर्माण ना सरदार साहेब ना अडग निर्धार दृढ़ संकल्प अने राष्ट्र ना आत्मसन्मान नु प्रतीक छे। तेमनो आ संकल्प 1951 नी 11 मे पूर्ण थयो ते गौरवशाली विरासत ने आजे 75 वर्ष थया छे। आदरणीय श्री नरेन्द्र भाई मोदी 2001 में मुख्यमंत्री तरीके सेवादायित्व संभाळ्युं। एज वर्षे तेमणे सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण नो सुवर्ण जयंती उत्सव उजवीने आपणने तक आपी हती। अने आजे सरदार साहेब नो दृढ़ संकल्प साकार थयानो आ अमृत उत्सव आदरणीय वडाप्रधान श्री मोदी साहेब नी प्रेरणा थी देश नी आजादी ना अमृत काल में ज आव्यो छे ते सोनामां सुगंध समो प्रसंग छे। आखा युग नु निर्माण करनार विजनरी लोकनायक श्री मोदी साहेबे प्रत्येक भारतवासियों में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अने सनातन हिंदू संस्कृति पुनर्जागरण नो भाव प्रकट प्रबल बनाव्यो छे। आदरणीय श्री मोदी साहेबे अयोध्या में राम मंदिर ना प्राण प्रतिष्ठा ऐतिहासिक प्रसंगे देश नु विजन आप्यु हतु। सोमनाथ मंदिर पर 1000 वर्ष पहला थयेला आक्रमण सामे शौर्य दाखवनार स्वाभिमानी योद्धाओं ने याद करतु सोमनाथ स्वाभिमान पर्व काशी विश्वनाथ कॉरिडोर केदारनाथ धाम विकास पावागढ़ में 500 वर्ष पछी ध्वजारोहण अने अंबाजी कॉरिडोर तथा सोमनाथ तालीम संगल द्वारा विरासत भी विकास भी साकार कर्यु छे। अने फरीथी ज्यारे आजे गुजरात में आव्या छे त्यारे फरीथी एमनु स्वागत करीने वीरमू छू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात।
1: That was the welcome address by the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, and he mentioned about the various development works that have been undertaken by the visionary leadership of the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and he mentioned about the Kashi Vishwanath corridor, the Shri Ambaji temple in Gujarat, and also the Prana Pratishtha of the Shri Ram Lala temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India, and the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp, and also the stamp is being now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
2: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय
1: उपस्थित। एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat India rupees 75 with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's a beautiful replica of the Somnath Temple.
2: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है, और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।

0: The Honourable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, will now address the gathering.
1: Jai Somnath. Jai Somnath. Har Har Mahadev. गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लियते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में हां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं,

हमें हजार वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुछ भी प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता

समस्या को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा, दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए, कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर दो और परमाणु परीक्षण हुए, उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था तब मैंने कहा था जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में

इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले, महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे, बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलीश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने

राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं, उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक
रौप्य

परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं, हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़कर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब हम अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करें। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय।

0: सोमनाथ। हर हर महादेव।
1: दी Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। माननीय प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ, स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ, अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ, मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
3: सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक राय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: बता दूं? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।

जिंदगी के इस शोर शराबे में सुरीला सफर महज आवाजों का मेल नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक बहाना है। हमारा मन उस बहती नदी की तरह है जिसे किनारों की बंदिशें रोक नहीं सकती। ये तो अपनी ही धुन में कभी यादों के भंवर में उतरता है तो कभी सुकून के साहिल को छूता है। जैसे नदियां आजाद होकर सागर की ओर बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही आप भी नेहा के साथ अपनी कल्पनाओं की कश्ती को तैयार कर लीजिए। चलिए आज एहसासों की लहर पर सवार होकर रूह की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां सिर्फ सुकून और सुरों का बसेरा है। ये कमेंट हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, आज का सुरीला सफर की पोस्ट बिटिया नेहा बड़ा मन बनाकर लेकर आई है, वो भी निर्धारित समय से कई घंटों पहले। क्योंकि हर श्रोता अपने विचार भी बड़े मन से व्यक्त कर सके, हम भी ये कहते हुए स्वागत करते हैं कि ये विविध भारती, ये सुरीला सफर, ये विषय से जुड़े गीत, ये प्रसारण तरंगे हमारे दिल को चुराएं, हमको लुभाएं। मन कहें क्यों न मैं गाऊं, क्यों न मैं जुड़ जाऊं सभी मित्रों को, और मेरे लिए भी इन्होंने लिखा है, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और हमारा जो अगला गीत है उसके बोल, मतलब वही जो शब्द आपने पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाना है, शब्द है मन, और ये गीत भी कई लोगों ने सही पहचाना है। सुनिए चित्रलेखा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

मन को लेकर हमारे एक साथी ने लिखा है, मन प्रसन्न हो तो छोटी सी बात भी खुशी दे जाती है, लेकिन जब मन उदास हो तो सारी दुनिया फीकी लगने लगती है। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब मन थक जाए तो थोड़ी शांति, थोड़ा संगीत, कुछ अपनों का साथ, खुद से बातचीत बहुत सुकून देती है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, हमारा मन हमारे मस्तिष्क को साथ लेकर इंटरनेट से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ लगाता है, जिसके लिए ये पूरा ग्लोब भी छोटा है। मन की दौड़ का कोई अंत नहीं। बहरहाल आज भी नेहा जी के साथ सुरीला सफ़र सुहाना ही होगा। जी हाँ, तो मन की जो दौड़ है उसे कोई रोक नहीं सकता। बस आंखें मीचिए और सोचिए किसी दूसरे ग्रह के बारे में, तो आप बस वहीं पहुंच जाते हैं। तो मन को कहीं भी जाने के लिए बस पलक झपकने का समय लगता है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, अगला गीत और अगला शब्द भी जो आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये है बंधन। तो सुनिए इस गीत को, करण अर्जुन फिल्म से, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़ें हैं, इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। और आप बताइए, बंधन में होना कैसा लगता है? बंधन किसी भी तरह का हो सकता है, वो बंधन अच्छा भी बुरा भी। आप क्या समझते हैं बंधन से और आपके क्या विचार हैं, ज़रूर बताइएगा। सुनिए ये गीत।

जी हाँ, तो हमने बात की थी बंधन की। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अर्थ ये कोई जंजीर, डोर या प्रतिज्ञा हो सकती है। आध्यात्मिक या दार्शनिक संदर्भ में ये वो विवशता है जो इंसान को किसी परिस्थिति में रहने को मजबूर करती है। भावनात्मक संबंध या दोस्तों, परिवार के बीच घनिष्ठ प्रेम और रिश्ते को भी ये दर्शाता है। एक साथी ने लिखा है कि बंधन एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ की गहराई मानवीय भावनाओं, सामाजिक मर्यादाओं और आध्यात्मिक चेतना तक फैली हुई है। साधारण शब्दों में कहें तो बंधन का अर्थ जुड़ाव या बंधना, लेकिन ये जुड़ाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। बंधन स्वयं में बुरा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किससे और कैसे बंधे हैं। प्रेम का बंधन हृदय को विस्तार देता है, जबकि स्वार्थ का बंधन व्यक्ति को संकुचित कर देता है।

एक साथी ने लिखा है, आपने बंधन का पूछा, तो बंधन अगर प्यार, विश्वास और अपनेपन के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बंधन में हर कोई बंधना चाहेगा और बांधना भी चाहेगा, लेकिन बंधन अगर जबरदस्ती थोपे गए हो, जिम डर हो, एक अनिच्छ हो, वो बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं, इतने कठोर, जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा मन करता है कि ऐसे बंधों को, अरे बाप रे, इन्होंने लिखा है ऐसे बंधों के, नहीं देखिए अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे, तो जहां आप मतलब महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां आप बंध

कठोर जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसा मन करता है कि ऐसे बंदों को, अरे बाप रे, इन्होंने लिखा है ऐसे बंदों के, नहीं देखिए अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे, तो जहां आप मतलब महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां आप बंधन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, वहां से कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना सकें, क्योंकि ऐसे बंधन हमेशा तकलीफ ही देते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी ने कहा कि बंधन प्रेम का हो तो अच्छा लगता है। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये शब्द पंछी।

0: हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोक झोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं है। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: समय की एक अजीब बात यह है कि जब समय अपनों के साथ गुजारा जाए तो कम लगता है, और जब कठिन समय आता है तो वही समय बड़ा ज़्यादा लगने लगता है। बात हो रही है पल की। जी हाँ, अगला शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हो तो जल्दी से निकल जाते हैं, और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का काटा चल रहा है तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का काटा बढ़ रहा है, शब्द को जल्दी से पहचानिए। एक ही शब्द है जो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना है, बाकी सारे शब्द लिस्ट में आ चुके हैं।

संयोग देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे, तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में।

बंधन को लेकर एक साथी लिखते हैं, बंधन अनुशासन का दूसरा रूप है, इसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित गाना हो रहा है। खैर, बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने निकलें तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है, या फिर तैयार, या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है, या फिर जिसका, ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है, आसमां के नीचे इस गीत को लिखा है। तो बिल्कुल आप सब सही थे। ज्वेल थी फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज़, लता मंगेशकर ने साथ दिया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस जी बर्मन का संगीत।

तो कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगस्ती करना तो हमें भी पसंद है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथ ही लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है तो इस पर गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है तो से नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा, धन्यवाद इसे सुंदर कहने के लिए। फिर किसी ने लिखा है मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड, तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं। और लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूँ, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और शब्द पहचानने के लिए धन्यवाद।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए ये तो भी मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है जानकर। मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी हैं जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी, या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। एक आपके नाम से गाना है, वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए, हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छाँव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।

जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना, सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है। गीत बिल्कुल दुर्लभ है, जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना, जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए, अब इस सुरीले सफर कार्यक्रम से नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2 बजने को हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण BBG रामजी अधिनियम 2025 को देश भर में लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार यह कानून 1 जुलाई

0: 2026 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रभावी होगा। मनरेगा की जगह लाए गए इस अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, आजीविका के साधनों को सशक्त करना तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना है। इसके लागू होने से ग्रामीण विकास योजनाओं को नई गति मिलेगी और गांवों में अस्थायी रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम से सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। आम लोगों की शिकायतों के तत्काल निष्पादन के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पंचायत स्तर पर महीने में 2 दिन शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक करेंगे। सहयोग पोर्टल आम लोगों की शिकायतों को पारदर्शी तरीके से आने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने, स्थिति की जानकारी लेने, रिमाइंडर भेजने तथा प्रतिक्रिया देने में आसानी होगी। इस पोर्टल पर परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिन के अंदर उसका निष्पादन कर आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण किया। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस पथ से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद नितिन नवीन भी मौजूद थे। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर स्थित खटौरी गांव में पूर्वोत्तर भारत के पहले हाईटेक हैचरी प्लांट का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय खनन और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस प्लांट की स्थापना से कृषि उद्यमिता के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महावीर मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबैटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए और हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकतर भागों में अगले एक सप्ताह तक आंधी बारिश की स्थिति बने रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन का पूर्वानुमान जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के जलालगढ़ में सबसे अधिक 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं लखीसराय के चानन में 32.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिले के अजगैबीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक स्कूली छात्रा की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सारण जिले के भेल्दी थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी हुकूमत ने तरक्की याफ्ता भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण BVG रामजी एक्ट 2025 को मुल्क भर में नाफिज करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत देही तरक्यात के जरिए जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक ये कानून 1 जुलाई 2026 से भारत की सभी रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में मुअसर होगा। मनरेगा की जगह लाए गए इस नोटिफिकेशन का मकसद देही हलकों में रोजगार के मौके को बढ़ाना, आजीविका के वसाइल को मुस्तहकम करना और खुद इन्हसारी देही इकतसादियात को फ़रोग देना है। इसके नाफिज होने से देही तरक्यात मनसूबों को नई रफ्तार मिलेगी और गाँव में मुस्तकिल रोजगार को पैदा करने में फ़रोग मिलेगा। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना में वज़ीर आला सेक्रेटरीट में मुनाकिद प्रोग्राम से सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। आम लोगों की शिकायत के फौरी हल के लिए इसकी शुरुआत की गई है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि पंचायत सतह पर महीने में 2 दिन कैंप लगाकर लोगों के मसलों को हल किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग ज़िला मजिस्ट्रेट और SP करेंगे। सहयोग पोर्टल आम लोगों की शिकायतों को शफाफ तरीके से निपटाने के लिए तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर मरबूत ऑनलाइन सिस्टम के जरिए शिकायतें दर्ज करने, सूरत हाल जानने और रिमाइंडर भेजने और रद्द अमल देने में आसानी होगी। इस पोर्टल पर मामला दर्ज करने की तारीख से 30 दिन के अंदर इसका निपटारा कर दरख्वास्त दहिंदगान को तहरीरी इत्तला दी जाएगी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी आज पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का इफ्तिताह किया। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के तहत तामीरशुदा इस पथ से मुकामी लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस मौके पर नायब वज़ीर आला विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और BJP के कौमी सदर और राज्यसभा रुकन नितिन नवीन भी मौजूद थे। मगरबी चंपारण के रामनगर वाक़े खटोरी गांव में शुमाल मशरक भारत के पहले हाईटेक हैचरी प्लांट का इफ्तिताह हुआ। मरकजी वजीर ममलिकत बराए कानकनी और कोयला सतीश चंद्र दुबे ने इस प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्लांट के क़याम से ज़रई सलाहियतों के शोबे में नया इनकलाब आएगा और नौजवानों को रोज़गार के नए मौके फराहम होंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में खास महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक भी किया। मंदिर की तारीख में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जल अभिषेक किया गया। इस बीच एयरफोर्स ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर दिलकश करतब दिखाए और हेलीकॉप्टर के जरिए फूल बरसाए गए। सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर की दोबारा तामीर के 75 साल मुकम्मल होने की खुशी में मनाया जा रहा है। इस मौके पर रियासत के मुख्तलिफ अहम शैवालियों में खास पूजा और अर्चना की जा रही है। मगरबी हवा के असर से रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में आइंदा एक हफ्ता तक आंधी बारिश की सूरत हाल बने रहने का इम्कान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अररिया, किशनगंज, कटिहार और बांका समेत रियासत के शुमाल मगरब और जनूब मशरक खित्तों में तेज़ हवा के साथ बादल गरजने की पेशगोई की है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पूर्णिया के जलालगढ़ में सबसे ज़्यादा 35 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं लखीसराय के चानन में 32.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भागलपुर जिला के अजगैबीनाथ धाम के नमामी गंगे घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 2 नौजवानों की मौत हो गई। SDRF की टीम ने लाशों को बरामद कर लिया है। गया जिला के बाराचट्टी थाना हलका में GT रोड पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक की जद में आने से एक स्कूली तालबा की मौत हो गई। वाकया से मुश्तइल लोगों ने सड़क जाम कर मुजाहरा किया। सारण जिला के भेल्दी थाना इलाके में ट्रैक्टर की जद में आने से एक मोटरसाइकिल नौजवान की जाए वकूफ पर मौत हो गई। इसके साथ ही इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब रोजगार सूचना सुनिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन के 9175 पदों पर भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम पद के अनुसार 23 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 19 मई 2026। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें। पता नोट करें www.crpf.gov.in। कर्मचारी चयन आयोग SSC हिंदी ट्रांसलेटर के भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से अनिवार्य विषय के रूप में अंग्रेजी अथवा हिंदी के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या अंग्रेजी माध्यम के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और डिग्री में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेशन में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा कोर्स या 2 अथवा 3 वर्ष का अनुभव रखता हुआ होना चाहिए। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर होगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। अंतिम तिथि है 14 मई 2026। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट देखें। पता नोट करें www.ssc.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई। यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 2:15 होने वाले हैं। थोड़ी देर में दोपहर समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान

0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग BSF को लैंड ट्रांसफर

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने 1 वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
2: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
3: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
4: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय

0: विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदा बहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत है हेमंत कुमार का।

केएल परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज़ दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।

0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
1: असली नकली इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए, शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, सबिता बैनर्जी और सीता की। फिल्म का नाम बाजे कुंकरू।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन। और सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम से इस गीत के साथ नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: एक बेमिसाल शायर
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से
2: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कि

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखियां साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी, गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं, और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है। या आपके पास सुविधा है, आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही,
1: बिल्कुल
2: नहलाना जिसे कहते हैं, अगर तालाब है तो आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं। तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसे एक साथ नहा रही हैं। गर्मी इतनी चिलचिलाती, धूप होती, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी रहती है, तभी निकलती है। तो
1: बिल्कुल,
2: हमसे जितना हो सके हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं।
1: नहीं बिल्कुल, ये बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गाँव में तो इस तरह की छपरा बना दिया जाता है जहाँ भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलीथीन को भी वो चबाते रहते हैं। इस गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं, और यही पॉलीथीन उनके पेट में जाकर पक जाती है, जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहाँ तक कि मौत का कारण भी बन जाती है।
2: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें कि पॉलिथीन वगैरह, प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें या कचरा जहाँ डालते वहाँ डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें। और पशुओं का बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिख कर दी
1: है,
2: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी।
1: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या?
2: नहीं नहीं,
1: है ना, तो ये गलत बात है ना,
2: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। कथा सुधा में हम कहानी लेकर आए, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह है? तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था,
1: जी
0: और वैसे देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं.
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ना ऐसे, जब
0: बिल्कुल.
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो, है
0: नाच ही लो, तब तो खैर मन
1: ना
0: का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही
1: जी
0: जानता है जिसके
1: जी
0: साथ ये होता होगा.
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक।
0: चलिए
1: लीजिए,
0: तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी.
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
4: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए।

0: मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे, वो उसे पूरी आजादी से पाथे, उपेले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है मूरत कैसी भोली भाली सूरत, मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता, न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार ना होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही किया। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है इतना खराब दूध? ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता। वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो। बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना? रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती हो, यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी? सरीहन आंखों में धूल झोंकेंगी और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि 3रे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दुहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दूह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्यवर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका

0: ही हो गया।
1: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कम खोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही भी आई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
0: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे। ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था। लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
1: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
0: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां? इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार 1-2 घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गांव की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे। किसी में आलू, किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन ये तस्कीन थी कि दूध खालिस है, यही क्या कम है। मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
2: बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने

0: का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कानी हाउस भेज देंगे।
1: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
2: अरे मैं हाँ हाँ करती रही, मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे, अपने घर के होंगे। देखो बाबू, अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बताए देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
1: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था, बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
3: ये ले जा, ये ले जा, तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ खबरदार, जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
1: बात कहने की इस शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
3: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने, गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं, और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
1: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
4: अरे साहब, बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
1: मैंने कहा तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है? जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
4: देखिए, मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
1: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया। मगर मेहनत सफल हो गई, आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहाँ से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे, राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा? चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा

0: बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
1: अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह। जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
1: ये पत्तियां कहाँ रख जाऊं?
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा कर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
1: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से खाली नहीं।
2: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का पहला भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
3: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार अंत में, जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं। ये सोच करके ये आसान होगा, परिणाम बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लिखकर भेजी है इन्होंने।
4: बिल्कुल सही कहा। और देखिए वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वो खुला जो पशु हैं जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं, तो आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है। इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: एक साथ ही लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण हैं। नहीं, यहाँ से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
1: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत

0: देशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
1: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था।
0: जी, और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीक है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और इसके पीछे वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं, तो उनको एक कहना चाहिए, एक सम्मान देने के लिए
1: देने
0: भी ये
1: का
0: दिवस मनाया जाता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत।

0: देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज़्यादा मित्र करीब, क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आज़ादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुँच जाती, परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्या है जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज़्यादा फ्रीडम महसूस करते
0: जी
1: हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहाँ एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है, आप खुले खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने
0: बिल्कुल
1: देखा है अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो
0: जी।
1: सहेलियां थीं, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे,
0: उनकी
1: और
0: डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे,
1: हाँ
0: और रूठना मनाना तो चलता था।
1: चलता ही
0: लेकिन
1: था।
0: रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में
1: हाँ
0: भी खटास
1: तो
0: आती है,
1: आती
0: लेकिन
1: है, लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं समझती
0: हाँ
1: हूँ अगर दोस्ती में खटास आती है तो
0: जी
1: कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब
0: बिल्कुल।
1: दोस्ती में खटास आती है, वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्त ही रहते हैं।
0: दोस्ती रहती है,
1: जहाँ दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ
0: स्वार्थ
1: या
0: उनके
1: मन में कुछ
0: अंदर,
1: था।
0: बिल्कुल सही
1: वरना
0: बात।
1: आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम
0: जी
1: बात करती हो ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
0: बिल्कुल। सौ की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो
1: तो आप नहीं
0: अहंकार है,
1: निभा
0: तो आप
1: पाओगे,
0: दोस्ती नहीं निभा
1: नहीं निभा
0: पाएंगे, है ना।
1: पाओगे।
0: तो हमारे
1: दोस्ती शब्द तो बहुत बड़ा है
0: बहुत
1: मंजरी,
0: बड़ा है
1: मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते,
0: जी,
1: जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं।
0: आ गई जी।
1: लेकिन अगर वो नहीं आई हैं तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया, तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है। और बहुत अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात है जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं। पुराने पुराने कहाँ गए कहाँ
1: हाँ, सही बात है। कुछ
0: गए,
1: मित्रों ने हमें खोज लिया, अरे आप
0: है
1: कहाँ रहती हैं, आप
0: ना।
1: वही मंदाकिनी है
0: हमने
1: जो
0: खुद ही
1: कभी साथ
0: दो
1: पढ़ा करती थी,
0: जी
1: तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है ये कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी,
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: वो
0: बात
1: एक
0: है,
1: बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ
0: बिल्कुल
1: उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है।
0: कुछ भी नहीं। अगर
1: तो
0: वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ
1: हाँ
0: लीजिए आपने सब कुछ समझ
1: समझ लिया,
0: लिया।
1: तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाएं तो समझ
0: बहुत
1: लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है
0: जी
1: ना।
0: जी
1: एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधनकारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त हैं। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
0: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज़्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज़्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने।
1: बिल्कुल। मैं एक श्रोता लिखती हूँ कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त

0: परिवार से ज्यादा करीब होते हैं बिना शर्त स्वीकृति के। दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं। परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज़्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज़्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह खड़े साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिसे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है, जो रिश्तेदार से ज़्यादा असरदार होता है। इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।

0: तो
1: हाँ तो
0: देखिए,
1: मंजरी बताइए, दोस्ती
0: हमारे
1: में और क्या क्या होता है?
0: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं तो दोस्तों के साथ बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं, है ना।
1: मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते हैं?
0: भाई देखते
1: मुझे
0: हैं,
1: तो लगता
0: क्योंकि
1: है
0: चलो
1: दोस्ती में हम खर्चा देखते ही नहीं
0: नहीं,
1: है।
0: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते
1: अरे मैं तुम्हारे
0: हैं।
1: साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
0: देखती हूँ।
1: हाँ
0: चलिए ठीक है, कर लेंगे।
1: हाँ
0: और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह। मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों ही, दोनों की अपनी अपनी जगह है, और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और

0: समझ होती है, जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
1: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं
0: जी
1: जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफ़र की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज़्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहाँ वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
0: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहाँ दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज़्यादा बेहतर समझ ले, शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज़्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर
1: बिल्कुल
0: बात
1: सही।
0: है।
1: और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहाँ गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है, लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम लोग
1: तो
0: सुनते हैं गीत।
1: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें।

0: तो मंजरी भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें, कि दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है,
1: जी
0: और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है।
1: मिलते हैं बिल्कुल,
0: तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठकर खाते हैं तो कितना
1: बनाते हैं
0: मजा
1: तो
0: आता
1: बहुत
0: है
1: अच्छा
0: ना।
1: लगता है। जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन हैं हमारे, दाल पीठा और सत्तू का शरबत। तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, हम उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगो कर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने चने का, भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
0: नहीं आप पढ़िए ना, क्या कह
1: लिखते
0: रही
1: हैं कि
0: हैं।
1: सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का जौ होता है, जिसे लोग कहते हैं लोग खाते हैं। सतुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है जो हमें पता चल गया कि हम किस
0: दोनों
1: चीज
0: में क्या फर्क
1: क्या
0: होता
1: फर्क
0: है।
1: होता है।
0: हाँ, जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है,
1: जी
0: कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
1: क्या बात है यानी आप इतने से ही निकल नहीं पाते
0: तो
1: जी
0: अगली बार, आप मेरी अच्छी दोस्त है ना,
1: जी
0: तो अगली बार आप ये सत्तू और सतुई बनाकर लेकर आने वाली हैं।
1: पक्का।
0: ठीक है, तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: जाना।
1: तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त अब पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
1: प्यार भरा नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं, कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है, तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीतिया संक्रमित होती है आगे चल के, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं पर हमें वो कभी ज्ञात हुई, यह ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया?

0: वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू।
1: जी
0: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई। और एमिया मतलब खून की बीमारियाँ। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई। लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियाँ पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में 6वें दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है। एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पर ये बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है वहाँ की जो जनता भारत में स्थलांतरित माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में ये बीमारी कॉमनली पाई जाती है। नॉर्थ रीजन में गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है। महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी। लेकिन
1: अच्छा, लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
0: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं हैं उससे निगड़ित होती है। तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहाँ पे माइग्रेशन इज़ वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में।
1: डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप, कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है?
0: देखिए पूरी भारत दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो है जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं। और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल। तो 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं ना एक टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिनन होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफ़ी गुना तो नीचे होता है पानी के। क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, इनका जो होते हैं इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल रीता जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार नहीं होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में।
1: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने। हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे?
0: देखिए हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं। तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूँगा।
2: फूलों

0: बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। वैसे ये बताइए, थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या-क्या हैं?
1: देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है। यह आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफ़ेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना या हल्की सी कमज़ोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है। ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती है, वो काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे
0: अच्छा।
1: इनका जो शरीर में, अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफ़ी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियाँ आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं, पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
0: जो मेजर होता है।
1: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफ़ेद दिखने लगते हैं। माएँ देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दें तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियाँ होती है, बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियाँ, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती हैं, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
0: अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
1: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है। ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा

0: थैलेसीमिया।
1: बीटा।
0: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में, जैसे कि शरीर में लोहों की कमी हो गई या किसी और चीज़ की कमी हो गई, तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगना ही लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जो हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने के वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है।
1: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा।
0: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं। बच्चे में पीलिया दिखता है। जो वो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं, उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज़ भी बढ़ जाती है। कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
1: जैसे आपने ये भी बताया तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकुड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
0: आप देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रक्त संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण, या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
1: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से इसका रीज़न जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी, तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता जैसे कि आपने कहा हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है।
0: इसमें अब भी देखिए, ये ज़रूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं, ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में ये बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को ऐसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है, वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के दो सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के दो जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें, तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है, तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक आध केस ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है, और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया, और जो दो क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया, तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है, उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ़ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है, वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है, तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है, तो बच्चा सफ़ेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज़्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज़ की तकलीफ होती हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग, मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूँ, तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा, हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।

0: करते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमज़ोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
0: देखिए, धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का, और गाना है पल पल दिल के पास।

0: डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा कि इस बीमारी के उपचार के जो मुख्य मुख्य घटक होते हैं वो क्या हैं?
1: देखिए कैसे होता है कि एक बार ये बीमारी आ गई बच्चे में तो इसे ठीक करने के उपचार बहुत ही कम अवेलेबल है आज की तारीख में। इन बच्चों का मुख्य जो इलाज होता है वो तो रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इनमें रक्त बनने की प्रणाली अब बंद पड़ चुकी है या गलत तरीके से काम कर रही है। इसकी वजह से क्या लगता है कि इनको हर महीने रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, और जो लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर चलते रहता है। मुख्य रूप से अगर आप देखा जाए तो रक्त एक लोह का मुख्य स्रोत होता है, रक्त में जो हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं या आयन का स्रोत होता है। तो क्या हो जाता है कि जब 20 से ऊपर ब्लड यूनिट ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं तो लोह की मात्रा शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसीलिए रक्त संक्रमण के साथ लोह कम करने के इंजेक्शंस या टैबलेट्स इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं।
0: हो
1: तो रक्त संक्रमण और आयन चिलेशन यानी लोह कम करने की दवाइयाँ ये एक सबसे मुख्य उपचार पद्धति है और यही कारगर करती है। कुछ कुछ दवाइयाँ भी अवेलेबल है इस चीज़ में पर इतनी कारगर नहीं है। बीमारी को अगर मुख्य तरीके

0: ये ठीक करा जाए तो स्टेम सेल ट्रीटमेंट यानी स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, ये एक मुख्य ट्रीटमेंट है इसमें।
1: आपने बताया है कि उसको एक अवधि के बाद बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो वो कितनी मात्रा में होता है और कितने महीने या दिनों के अंतराल के बाद उसको होना ज़रूरी होता है?
0: ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो हम लोग फ्रीक्वेंसी तय करते हैं वो होती है हीमोग्लोबिन की स्तर के ऊपर। यह हीमोग्लोबिन का स्तर बच्चों में हम लोग 9 से 10 के बीच में रखना पसंद करते हैं। वही वो जब बच्चा पूरा बड़ा हो जाता है 17-18 साल का, तो यही स्तर हम लोग 7 से 8 के बीच में रखना शुरुआत कर देते हैं। ट्रांसफ्यूजन के फ्रीक्वेंसी के बारे में अगर हम लोग बात करें यानी ब्लड चढ़ाना कितना ज़रूरी होता है, तो
1: कब कब?
0: शुरुआती जो होता है हर 3 से 4 हफ्ते में एक बार लगता है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है उसका आकार मान भी बड़ा हो जाता है, उसका वजन बड़ा होता है, तो पहले जो सिर्फ 1 यूनिट हर महीने में लगता था, फिर हर महीने 2-2 यूनिट लगने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अब हम लोग बार बार जो ब्लड चढ़ाते हैं उसके वजह से ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज यानी प्रतिजैविक तैयार हो जाते हैं ब्लड में, और जो बाहर से ब्लड दिया जाता है वो शरीर में टिकता नहीं है। इसलिए जब हम लोग दूसरे या तीसरे दशक में आते हैं इन पेशेंट्स के साथ में, तो ब्लड करीबन हर दूसरे हफ्ते में चढ़ाना पड़ना ज़रूरी हो जाता है। पर हीमोग्लोबिन का स्तर यही ब्लड चढ़ाने की मुख्य फ्रीक्वेंसी तय करता है।
1: थैलेसीमिया जो बीमारी है डॉक्टर साहब, ये पीड़ित जो इससे बच्चे होते हैं उनकी आयु क्या होती है और इसके उपचार में तकरीबन आप क्या सोचते हैं कितना खर्च आता है?
0: करीबन 5% बच्चे भी थैलेसीमिया के आइडियल तरीके से यानी जो वैज्ञानिक रूप से जो उपचार है वो नहीं ले पाते हैं। इसका तो मुख्य कारण है इसमें लगने वाला खर्च। औसतम जो खर्च होता है अगर बच्चे की उम्र 3 से 4 साल हो जाती है तो हर साल का खर्चा लगभग 1 से 1.25 लाख रुपया होता है। इसमें जो इंक्लूड होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके लिए बार बार हॉस्पिटल जाना, उसके लिए स्पेशल ब्लड सेट्स लगते हैं हम लोग जिसको फिल्टर्स कहते हैं, उनका खर्चा होता है, और शरीर में लोहे की मात्रा ज़्यादा रही रहे इसके लिए जो इंजेक्शंस या जो दवाई देनी पड़ती है उनकी मात्रा। तो ये जो मैंने बताया है उम्र के 4 साल तक, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चे का वजन बढ़ने लगता है तो इन दवाइयों की जो मात्रा रखती है वो भी बढ़ने लगते हैं। हम लोगों ने एक अंदाजन किया था कि भारत में इन बच्चों पे कितना खर्चा हो सकता है, तो करीबन अगर ये बच्चा 20 साल तक जीता है तो उसके ऊपर तब तक 15 से 20 लाख रुपए खर्चे हो जाते हैं, और अगर 50 साल तक अगर ये बच्चा जीता है तो उस पर करीबन 1 करोड़ रुपया तक का खर्चा हो सकता है। भारत में आइडियल यानी वैज्ञानिक रूप से सभी बच्चे नहीं मैनेज करने के ऊपर इन बच्चों की औसतम आयु 15 से 25 साल के बीच में होती है।
1: ये ब्लड बैंक से मुहैया करवाने की कोई व्यवस्था होती है या परिवार के किसी सदस्य को बार बार ब्लड देना होता है?
0: हर साल भारत में ही सिर्फ, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल में कितना ब्लड लग सकता है। और ब्लड देने की इससे भी ज़्यादा अलग कारण होते हैं, जैसे ऑपरेशन के दौरान या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी अलग वजह से ब्लड देना ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए क्या हो जाता है कि ब्लड की शॉर्टेज तो हमेशा होती है। जैसे जैसे इस बीमारी के बारे में जाना गया तो भारत में कई सारे शहरों में कुछ संस्थाएं बनाई गई जो इन सब बच्चों को सपोर्ट करती है। तो ऐसे अलग अलग सोसाइटीज़ है, बम्बई में KEM अस्पताल में, JJ अस्पताल में, 80 के दशक में ये संस्थाएं बन चुकी है। थैलेसीमिया इंडिया सोसाइटी भी है, दिल्ली में एम्स में है, और काफ़ी सारे शहर में जैसे कलकत्ता, चेन्नई, हर जगह पे थैलेसीमिया सोसाइटी है। तो इनका मेंबर बन के आप ब्लड के लिए उनसे मदद की अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार तो ब्लड देना ज़रूरी नहीं होता है वैसे, पर कभी कभार किसी रिश्तेदार को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ सकती है।
1: ये तो बहुत उम्दा बात लाई आपने। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे इस संबंध में गीत के पहले कि कोई दवाइयाँ भी होंगी जो इस बीमारी में मदद कर सकती हैं इंजेक्शन वगैरह के अलावा?
0: एक दो दवाइयाँ इस बीमारी के लिए देखी गई थी, उन्होंने मुख्य रूप से बीमारी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। वीट ग्रास जिसे गवांकुर कहते हैं, इसका जूस पिला के कुछ कुछ लोगों ने देखा कि बच्चों में कुछ फायदा कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने पाया कि 25% बच्चों में रक्त संक्रमण की ज़रूरत धीरे धीरे कम होने लगी, पर कुछ अन्य परीक्षण में यही वापस से ऑब्जर्वेशन नहीं देखा गया, इसलिए इसे तो रिकमेंड नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ होती है एक हाइड्रोक्सी यूरिया करके दवा होती है, ये ओरली लेने वाली ये कैप्सूल होती है, इसे भी देखा गया है। इस बीमारी में ये दवा इस तरह से काम करती है कि जो अपना माँ के पेट में होते होने वाला जो हीमोग्लोबिन होता है जिसे हम लोग HbF कहते हैं, ये उसकी मात्रा खून में बढ़ाने की वजह से ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। पर मोटा मोटी तौर पे कोई भी दवा बाहर से इस बीमारी को ठीक करने में लाइलाज ही रही है।
1: और यहाँ पर हम चाहेंगे कि जो बातचीत बहुत भारी भारी सी वजनी सी लग रही है, खतरे की आगाह वाली बात कर रही है, तो माहौल को हल्का करते हैं आपकी पसंद का कोई गाना सुनकर।
0: तो रोजा फिल्म से एक जो गाना है भारत हमको जान

0: डॉक्टर साहब, गीत वाकई में बहुत ही इंस्पायर करने वाला रहा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए और भी जो अल्टरनेटिव चीज़ें हैं, वो विकल्प क्या हैं आपकी नज़र में?
1: इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक करने का एक ही विकल्प है आज के तारीख में, वो तो है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। स्टेम सेल देखा जाए तो ये अपने हर रक्त में होने वाली पेशी की जननी है, जैसे लाल रक्त पेशी, सफ़ेद रक्त पेशी और प्लेटलेट। लेकिन स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की होना ज़रूरी होता है। यह डोनर भाई बहन हो सकता है जिनमें शायद सिर्फ आधी ही बीमारी हो या जो पूर्णतः नॉर्मल हो, या माँ और पिताजी से स्टेम सेल्स लिए जा सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर रजिस्ट्री से भी हो सकती है, तो वहाँ से भी स्टेम सेल लिया जा सकता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये जो उपचार पद्धति है, ये बहुत ही खर्चिक उपचार पद्धति है, उसमें जान का खतरा भी होता है। जिसमें सिबलिंग डोनर ट्रांसप्लांट, यानी जब भाई बहन से हम लोग सेल्स लेते हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए, तो भी वो पूरी तरह से मैच होना ज़रूरी होता है। जैसे अपने रक्त के ब्लड ग्रुप जैसे होते हैं AB, AB या O, वैसे ही हमारे सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का ग्रुप होता है जिसे हम लोग ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या HLA कहते हैं। इसके अलग अलग 10 रीजन्स होते हैं। ये 10 से 10 रीजन जब पूरी तरह से मैच करते हैं, जिसे हम लोग फुल मैच कहते हैं, तभी हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के आगे बढ़ते हैं। यह जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है उसमें करीबन एक वक्त पे 8 से 10 लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है,
0: ओहो,
1: और इसमें जान का खतरा 5 से 10% रहता है। दूसरा जो मैंने कहा, जिसमें माँ और पिताजी से स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग उम्मीद रखते हैं, उसमें मैच होने का चांस एक हाथ ही होता है, 1 लाख में। तो उसमें भी जो खर्चा होता है सेम ही होता है, और हम लोगों ने हाफ मैच कभी कभी ट्रांसप्लांट कर दिया तो ये खर्चा 15 से 20 लाख तक हो जाता है, पर जान का खतरा 10 से 20% बना ही रहता है। और जो हम लोग अनरिलेटेड डोनर ट्रांसप्लांट, जो मैंने आपको बात बताई थी, जहाँ पे आप बाहर के किसी डोनर रजिस्ट्री से सेल्स वगैरह अगर मंगवाते हैं, तो यही खर्चा 35 से 50 लाख के बीच में हो सकता है, और इसमें जान का खतरा 20 से 30% होता है। तो ये सारे ही बहुत ही खर्चिक उपाय हैं। तो इसीलिए, पर ये छोड़ के आज की तारीख में इस बीमारी के रुग्णों को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कोई भी उपचार पद्धति अवेलेबल नहीं है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप नई पेशी बनाने वाली एक सिस्टम लेके आते हो। तो जब हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं और ये सक्सेसफुल हो जाता है, तो ऐसे बच्चे रक्त संक्रमण से

0: हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती है,
1: अच्छा, यदि सक्सेसफुल हो गया तो।
0: यदि सक्सेसफुल हो गया तो।
1: लेकिन इसी पूरी प्रक्रिया में इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को और उसके परिवार को तमाम तकलीफों का सामना भी करना पड़ता होगा।
0: बहुत सारी तकलीफें होती है। समझ लीजिए कि आपके पास ऐसा बच्चा है, इसे आपको कम से कम महीने में एक बार तो अस्पताल लेके जाना है। अब जब अस्पताल लेके जाना है तो जो जो लेके जाने वाला है उसे भी अपने भी काम से छुट्टी लेनी होती है। घर पे बाकी के अगर बच्चे हैं, बाकी की चीज़ों के ऊपर है, तो उस पर भी ध्यान नहीं दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हर महीने महीने तो शुरुआत में लगता है, बाद बाद में तो हर 2-3 हफ्ते में लगता है, तो आपके हॉस्पिटल जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दूसरी चीज़ होती है कि देखिए, ब्लड संक्रमण तो हो गया, ये किस्सा जो

अपने दोस्तों के साथ या जो हमारा मन चाहा होता है उससे जब हम बातें करते हैं तो हमारा चेहरा जो है वो सारी दास्तान बयान कर देता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हंसना प्राकृतिक औषधि से कम नहीं है। हंसने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार और दिल को स्वस्थ रखने में बेहद मदद करता है, जिससे दिल की बीमारी का खतरा भी कम होता है और हंसना एक अच्छे व्यवहार को भी दर्शाता है। कहते हैं ना कि जब लोग हंसते हैं तो हम आम जबान में बोल देते हैं कि बड़ा अच्छा स्वभाव है, बड़ा अच्छा उसका अखलाक है। तो हंसना एक अच्छे व्यवहार को भी दर्शाता है और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है। सखियों, खुश रहने से हमारे पूरे शरीर में एनर्जी और ताजगी का एहसास होता है। तो आप सभी खुश रहिए और खुलकर हंसे। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत, इसमें भी आप उम्मीद है कि मुस्कुराएंगे।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो बहनों, आपने अभी गीत का भी मजा लिया और गीत में मुस्कुराना भी हुआ। उम्मीद है कि आप भी हंसते मुस्कुराते ये प्रोग्राम सुन रही होंगी और आज मौसम भी बड़ा खूबसूरत है, मौसम का भी पूरा लुत्फ ले रही होंगी। हंसने से तनाव कम होता है और हंसने से जिस्म में एनर्जी आती है, चेहरा खिल उठता है। जब हम बहुत ज़्यादा हंसते हैं,

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, हम अपने कार्यक्रम के जरिए बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारा आनंद भी लेते हैं, और अक्सर हमारे बातों में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे हमारी जानकारी में इजाफा होता है और कहीं कहीं पे बहुत ही रोचक बातें होने लगती हैं। तो सखियों, अब हम बहुत ही एक अच्छे दोस्त के बारे में बातें करते हैं। मोबाइल का नाम लेते ही कई तरह की बातें हमारे जहन में आने लगती हैं। कहिए दोस्तों, मोबाइल हमारा कैसा दोस्त है, है ना? अच्छा दोस्त मोबाइल हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। इससे हम मनोरंजन करते हैं, घर बैठे लोगों से काफ़ी तरह की बातें करते हैं, और मोबाइल से ऑनलाइन जॉब करके अच्छे खासे पैसे भी हम कमा लेते हैं। ऑनलाइन बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बहुत सारे आवेदन हम ऑनलाइन भर सकते हैं, खूबसूरत नगमे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सोशल मीडिया से पूरी दुनिया में क्या हो रहा है हम जान सकते हैं। ऑनलाइन काम करने से वक्त की बचत होती है और आप कहीं भी कभी भी काम कर सकती हैं। सफ़र करते वक्त अक्सर हम बोर होते हैं और हमें वक्त लगता है कि बहुत लंबा हो गया है, तो ऐसे वक्त में हम मूवी देखते हैं। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन सखियों, ज़्यादा देखने से और बेवजह मोबाइल चलाने से हमारी सेहत पर भी काफ़ी असर पड़ता है, और इसका असर ख़राब ही पड़ता है, क्योंकि आँख पर असर और ज़हन पर, दिमाग पर असर ज़्यादा पड़ता है। आँखें थक जाती हैं और मानसिक तौर पर हम पूरी तरह से थक जाते हैं। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा सा नुकसान कुछ सेकंड में ही हो जाता है। तो सखियों, मोबाइल से दोस्ती करें, लेकिन थोड़ा संभल कर, क्योंकि ज़्यादा गुर्बत किसी भी चीज़ से अच्छी नहीं। चलिए, हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।
4: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

और अब आइए जानकारी में थोड़ा सा इजाफा करते हैं, एक साहसी महिला पर चर्चा करते हैं जो दिव्यांग होते हुए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनी और एक मिसाल कायम की उन्होंने। जी हाँ सखियों, मैं बात कर रही हूँ अरुणिमा सिन्हा, जिन्होंने भारत से राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी तथा एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग महिला हैं। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के भारत भारती संस्था ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली इस दिव्यांग महिला को सोनपुर रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और 2016 में अरुणिमा जी को अंबेडकर नगर रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। सखी, हौसलों में ताकत हो और जज्बे मजबूत हों तो फिर कामयाबी को कौन टाल सकता है, कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर ऐसे लम्हों पर पूरा साथ देते हैं। उड़ान हौसलों में थी तभी तो दिव्यांग को मात देखकर फतेह का झंडा फहराया और अपने आप को देश और दुनिया के सामने एक मिसाल कायम किया और अपने देश का नाम भी रोशन किया। तो ऐसी महिलाओं से हमें प्रेरणा ज़रूर मिलती है और हमारा साहस भी बढ़ता है। चलिए, कुछ इसी तरह का जिक्र इस गीत में भी हो रहा है।

बेशक सखियों, अगर हमारे हौसले में अगर मज़बूती हो और तो हम हर फतह कर सकते हैं, हर जंग को जीत सकते हैं। सखियों, खूबसूरत लम्हे वक्त और साथ कब गुज़र जाते हैं पता नहीं चलता। ऐसे लम्हे यादगार बन जाते हैं, तो कुछ यादों को समेट रखेंगे हम और कुछ ताज़ा और दिलचस्प खुशबुओं के साथ हम फिर हाजिर होंगे प्रोग्राम घर आंगन में। अब आपकी रेडियो सखिया निशा मानुसी चाहती है आप सभी से इजाज़त। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर।

आज गांव घर कार्यक्रम संगे हम दीनू भाई सब श्रोता भाई बहन के राम राम। श्रोता सभे, मौसम तो बहुत तेजी से बदल रहल बा। या यूं कहीं कि मौसम में जौन बदलाव हो रहल बा ई कोई खातिर ठीक नहीं है। श्रोता भाई बहन, छने में ठंडा आ छने में गरम, कहियो ठंडा वर्षा हो जाता तो इतना ठंडा हो जाता कि कहीं मत, आ दूसर के दिन इतना गर्मी होता कि बर्दाश्त नहीं होखत। इस ठंडा गर्मी के वजह से हमनी के स्वास्थ्य पर बहुत एकर बुरा प्रभाव पड़ता। हमनी के चाही कि अपना शरीर पर विशेष ध्यान रखल जाओ। श्रोता भाई बहन, स्वस्थ रहल सबसे जरूरी बा। का खैले बानी, का पहन ले बानी, ई ज्यादे मायने नहीं रखत। मायने रखत आ ई कि हम कितना स्वस्थ बानी। श्रोता भाई बहन, धूप के समय बा, यही में काम धंधा बढ़ ले बा, ओकरा के कोई रोक ना सके। जहाँ भी निकली अपना के बचा के रहीं, वापस आई खुशी खुशी निकली, हंसी खुशी घरे आई। श्रोता भाई बहन, तनकी सा गर्मी अगर असर कर जाता तो तीनों त्रिलोक लौके लगता। हमनी के अपना स्वास्थ्य पर, अपन जे होखे घर के छोट छोट बच्चा या बड़ बुजुर्ग जे होखे ओकरा शरीर पर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देवे के चाही। काहे कि स्वस्थ शरीर ही सबसे जरूरी बा। शरीर अगर स्वस्थ बा तो कहीं भी और मन लगी, कोनो काम में मन लगी। आ शरीर स्वस्थ नहीं खे तो कहीं मन ना लगी। ए घड़ी गर्मी के समय बा, घर से निकल तनी, खेती कार्य खातिर निकली या कोनो काम खातिर निकली, शहर बाजार जाए के

थे ओकरा पर भी अतना ध्यान जरूर रखी कि संग में एगो छाता चाहे माथा ढके खातिर गमछा जरूरी बा। श्रोता भाई बहन, यह समय एक बोतल पानी भी बहुत जरूरी बा। अगर कहीं भी रुआ निकलतनी तो एक बोतल पानी रखब तो रुआ के फायदा ही करी घाटा ना करी। यह समय भोजन आ पानी से पेट अगर भर रहेला तो ठंडा चाहे गरम लागे के संभावना कम रहेला। अक्सर लूक लागी चाहे गर्मी असर करी पेट खाली रही तबे। एकरा बावजूद भी अतना भी जरूर ध्यान देवे के बा कि बहुत खाना भी नहीं खाए के जौना से कि पचे में परेशानी होके। हर बात पर विशेष रूप से ध्यान रखल जाई तबे हमनी के आगे आवे वाला समय में स्वस्थ रहल जाई। श्रोता भाई बहन, आज कार्यक्रम में सबसे पहले पौधों के स्वास्थ्य की जांच भी है जरूरी ए विषय पर चर्चा हुई। कल 12 मई के पौधा के स्वास्थ्य के जांच के अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनावल जाई। एकरा बाद मनोरंजन ओझा से लोकगीत सुनल जाई। आज डॉक्टर रमेश कुमार के वार्ता हुई, विषय बा शांति आ विकास में विज्ञान के योगदान। आज एक जानकारी के विषय रही राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का महत्व। अंत में मौसम पूर्वानुमान पर भी एक नज़र डालल जाए। श्रोता सभे, ई रहल कार्यक्रम संबंधी जानकारी। तो जैसन कि हम कहनी हाँ कि हमनी के चर्चा के विषय बा पौधों के स्वास्थ्य की जांच भी है जरूरी। तनी विचार करे के विषय बा कि का स्वास्थ्य खाली अदमिये के होला ना। श्रोता भाई बहन, जे भी जीव बा ओकर स्वास्थ्य बा। यहाँ तक कि मिट्टी के स्वास्थ्य के जांच भी समय समय पर हमनी का कराई ले जा। मिट्टी के स्वास्थ्य के जांच करावला से ई फायदा होला कि कौना खेत में का लगाई, कौना फसल के खेती कौना खेत में करे जोगबा ताकि उचित ओकर उत्पादन हो सके। वही तरह आदमी जैसे अपन जांच करावेला, शरीर के खून के जांच करावेला, पेशाब पैखाना के जांच करावेला, डॉक्टर के कहला के मुताबिक, वही तरह पौधा भी एगो जीव है। आ एगो पौधा अपना जीवन में जब पेड़ बनेला तो अतना ऑक्सीजन देला कि एगो स्वस्थ मनुष्य भी उतना अपना जीवन में ना कमा सके। हमनी के हर हाल में पौधा के जांच के सुनिश्चित करे के चाही। रुआ देखले हो कब खेत में फसल लगाई चाहे पौधा लगाई। श्रोता भाई बहन, एगुड़े पौधा अगर अस्वस्थ हो जाला तो पूरा खेत के पौधा के अस्वस्थ करे के क्षमता रखेला। काहे कि ओकरा में तरह तरह के विषाणु जनित रोग होला तो तरह तरह के विषाणु निकलिहन जौन कि आसपास के और पौधा के भी हानि पहुँचैहन। श्रोता सभे, पौधा स्वस्थ बा ई देखले से समझ में आवेला। अगर अस्वस्थ बा तो का ओकरा में कमी बा ई जांच के विषय बा। जांच करावल जाई तबे समझ में आई कि एकरा अंदर का कमी बा। श्रोता सभे, पौधा के जांच समय समय पर करावे के चाही। एकरा खातिर कृषि वैज्ञानिक लोग बा आ पौधा के जांच लोग करेला। पौधा में का कमी बा काहें एकर कभी कभी रुआ देखले हो कब कि कौनो पेड़ फल देता लेकिन फूल के साथ ही छोटा छोटा ही फल बनता तब तक झड़ जाता। तो कहीं ना कहीं एकरा में कुछ अस्वस्थता बा ताकि अपन फल उ नहीं पोस सकत। वही तरह हर फसल हर पौधा हर पेड़ के स्वास्थ्य जरूरी बा। स्वस्थ रही तो उत्पादन बढ़िया हुई, अगर अस्वस्थ रही तो उत्पादन निमन ना हुई। श्रोता भाई बहन, हर हाल में हमनी के यह जांच के सुनिश्चित करे के चाही। अगर बागवानी कैले बनी, बगीचा लगौले बनी, पेड़ पौधा लगौले बनी आ शौक से लगौले बनी, अतना सेवा करतनी जैसे गाय बछिया रखले बनी तो समय समय पर टीका दिवावतनी, वही तरह समय समय पर पौधन के स्वास्थ्य के जांच भी अगर कराइब तो

आगे आवे वाला समय निमन रही। श्रोता भाई बहन, अब हमार मन करता है एगो लोकगीत सुने के। आज हमनिका लोकगीत सुनल जाई मनोरंजन ओझा से, तो सुनल जाओ।

कितना बढ़िया लोकगीत लागल। श्रोता भाई बहन, लोकगीत भइल सुननी जा, बड़ा नीमन लागल। आ हमनी के लोकगीत सुननी है जा मनोरंजन ओझा से।

0: इतना बढ़िया लोकगीत सुनौला खातिर मनोरंजन ओझा के धन्यवाद। आ देखी जैसन कि हम कहले रही कि आज हमने के वार्ता सुनल जाई डॉक्टर रमेश कुमार से। एकर विषय रही शांति आ विकास में विज्ञान के योगदान। विज्ञान के ही देन बा कि आज हमने के समाज से लेके सब कुछ इतना तेजी से विकसित हो रहल बा। आज जहां हमने के मंगल ग्रह पर चांद पर पहुँचता नहीं जा, वही जे अपन समाज के भी बहुत आगे लेके जाता नहीं जा, एकर एगो मात्र उद्देश्य बा। विज्ञान के उद्देश्य से हमने के प्रेरित होता नहीं जा, जौना से हमने के आगे बढ़ता नहीं जा। आई हमने के डॉक्टर रमेश कुमार से जानल जाओ कि शांति या विकास में विज्ञान के का योगदान बा, तो सुनल जाओ।
1: श्रोता भाइयों, आप सभी लोग विज्ञान शब्द से भली भांति परिचित ही हैं। आप जो भी अपने इर्द गिर्द अथवा इस जीव जगत में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वे सभी के सभी विज्ञान का ही स्वरूप है। आदिकाल में मानव आश्चर्यचकित होकर प्राकृतिक वस्तुओं एवं इनकी घटनाओं को देखा। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, ज्वार भाटा, वायु, जल, अग्नि, वर्षा, ठंड, गर्मी आदि इनके बारे में जानना चाहा, परंतु मानव अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप में सभी प्राकृतिक क्रियाओं को, इनकी सूक्ष्मता को नहीं जान पाया। तब इसने कुछ ऐसे यंत्रों का निर्माण करना शुरू किया जिसके माध्यम से इनका क्रमागत अध्ययन किया, इसके कारणों को जाना और इससे अपनी सुरक्षा एवं सुविधा में वृद्धि की, जिससे विज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। विज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के साइंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है और साइंस शब्द लैटिन भाषा के साइंसिया शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना। वास्तव में प्राकृतिक वस्तुओं एवं घटनाओं का क्रमागत अध्ययन ही विज्ञान है। आज तो विज्ञान इतना विकास कर चुका है कि इसकी परिभाषा ही बदल गई। आज मानव अपनी आवश्यकता के प्रत्येक क्षेत्र में संपूर्णता एवं सर्वज्ञता के साथ विकास कर रहा है। वैसे तो विज्ञान शब्द का प्रयोग वेद से लेकर उपनिषद, गीता और पुराणों तक में हुआ है। विश्व का अलौकिक और अद्भुत ग्रंथ श्री रामचरितमानस, वंदे विशुद्धम विज्ञानौ कविश्वर कपीश्वरौ के साथ ही साथ उत्तरकांड में एक अर्धाली आई है कि बिनु विज्ञान की समता आवई, अर्थात बिना विज्ञान के सद्ज्ञान नहीं होता और बिना सद्ज्ञान के समता नहीं आती है। समता से ही शांति आती है और शांति ही विकास को संभव बनाता है। इस प्रकार विज्ञान से समता और समता के दिव्य भाव से ही जीव जगत के कल्याण के लिए विकास संभव है। अतः शांति और विकास विज्ञान का सत्य स्वरूप है। यहाँ शांति का आशय सार्वभौमिक है कि मानव अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए युद्ध और क्रांति के विरुद्ध बंधुत्व और सौहार्द को स्थापित करना ही वास्तविक विकास है, जिससे जीव जगत के लिए कल्याणकारी संभावनाओं का सृजन हो सके। क्योंकि प्रेम के सूत्र में एकत्व की गांठ बंधने पर ही आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास संभव है। वर्तमान युग में विज्ञान का तात्पर्य सिर्फ विस्फोटक उपकरणों के निर्माण, अपनी सुविधाओं में वृद्धि तथा प्रदूषण को रोकने के उपायों मात्र से नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक विकास का मतलब मानव विकास का यथार्थ उत्थान से है। मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्थान, सूक्ष्म और स्थूल प्रक्रियाओं में विकास इतना ही नहीं, बल्कि सर्वत्र संपूर्ण जीव के लिए कल्याणकारी संभावनाओं का विकास, रचनात्मक बुद्धि का विकास तथा विध्वंसात्मक बुद्धि के विनाश में ही विज्ञान के योगदान की सही सार्थकता है। अतएव आज जो कुछ भी दिख रहा है, यह सब विज्ञान का ही प्रतिफल है। यह विज्ञान तो समुद्र की गहराई से लेकर अनंत को चीरते हुए ब्रह्मांडों तक का इतना ज्ञाता बना हुआ है। इसके एक कण से प्रचंड विध्वंसक अस्त्र शस्त्र, अग्नयास्त्र निर्मित हो रहे हैं। अब यह ग्रह उपग्रहों का ज्ञान कराता हुआ सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा तक पहुंचने की चुनौती दे रहा है। यह कोई और नहीं, ज्ञान स्वरूप विज्ञान का ही साक्षात स्वरूप है। किसी भी वस्तु के सदुपयोग एवं दुरुपयोग पर उसका विकास और विनाश निर्भर करता है। जहाँ कल्याणकारी घटकों के विनाश हेतु विज्ञान का प्रचंड और रौद्र रूप सराहनीय है, वहीं कल्याणकारी समस्याओं का विकास शांतिदायक है। अगर भोजन करना विकास है तो उसका पाचन विज्ञान है। अगर कपड़ा पहनना विकास है तो उसका निर्माण विज्ञान है। यदि जन्म वंश का विकास है तो मृत्यु महाविज्ञान है।

यदि शांति जीवन का बहुमूल्य विकास है तो उसको प्राप्त करने की विधि अमूल्य विज्ञान है। आज विश्व के लगभग सभी राष्ट्रों के पास सुरक्षा के यंत्र सुलभ होते जा रहे हैं। इसे परस्पर सभी ने जान भी लिया है। यही कारण है कि आक्रमण आदि से परे होकर सभी देश मूलतः शांति की शरण में जाने का भाव प्रकट कर रहे हैं। विनाशक बुद्धि से न विज्ञान को हरासित कर सकते हैं और न ही विकास में कोई योगदान दे सकते हैं। हमारा देश भारतवर्ष सदियों से विज्ञान का पुजारी बनकर अपने वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा विश्व कल्याण की भावना से विश्व व्योम में नारा गूंजाता है कि वसुधैव कुटुंबकम। इस प्रकार हमारी बुद्धि विचार एवं चित्त सभी के सभी पूर्णतः विज्ञानमय है। यह विज्ञान अणुवत और महिमावान दोनों है। यदि परोपकार एक अद्भुत और अलौकिक विज्ञान है तो हिंसा भी एक वैज्ञानिक अस्त्र शस्त्र ही है। इस प्रकार विज्ञान का स्वरूप सर्वत्र सर्वज्ञ व्याप्त है। नित्य नूतन अनुभव के द्वारा ही विज्ञान के असीम स्वरूप का साक्षात्कार संभव है। तापमान, ठंड, तूफान, अग्नि अशांति नहीं उत्पन्न करती, ये तो शांति के सही मार्ग हैं। ज्वार भटाएं अशांति नहीं कहला सकती, क्योंकि तरंगों और लहरों के बिना जल सड़ जाएगा। मानव आदिकाल से संघर्ष करता आ रहा है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शांति को ही खोज रहा है, क्योंकि बिना शांति के विकास कैसा। मानव कृषि कार्य को विकसित किया तो अपनी उदर की अग्नि को शांत करने के लिए, औषधियों का निर्माण किया तो अपने कष्टों को शांत करने के लिए, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को विकसित किया तो अपनी आवश्यकताओं को शांत करने के लिए। इस प्रकार जैसे जैसे विज्ञान में विकास होता गया वैसे वैसे मानव की जिज्ञासाएं शांति के मार्ग पर अग्रसर हुई। युद्ध और आक्रमण से पूरे विश्व का इतिहास भरा पड़ा है। तब विज्ञान उतना विकास नहीं किया था। परस्पर शक्तियां आपस में टकराया करती थी, एक दूसरे को नष्ट करने में जीतने में अपनी शक्तियों को हरासित कर देते थे। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। उन कुसंस्कारों से ऊपर उठकर पूरा विश्व मानव कल्याण में लगा है। शक्तियों का सृजन आज भी हो रहा है, परंतु उसका उपयोग अपने देश को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए। विज्ञान की उत्तरोत्तर विकास का ही परिणाम है कि लोगों का विचार बदला। लोग अपने आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हीं शक्तियों का उपयोग कर रहे हैं। आज अपने देश में ही नहीं पूरे विश्व का भ्रमण आसानी से किया जा सकता है। पूरे विश्व के पल पल की खबरों को जाना जा सकता है। पूरे विश्व में होने वाली घटनाओं को देखा जा सकता है। आप कहीं हो पूरे विश्व के लोगों के संपर्क में रह सकते हैं। ये सब के सब विज्ञान के विकास का ही परिणाम है। आज जहां लोग समुद्र की गहराइयों में सैर कर रहे हैं, वहीं आज का विज्ञान मंगल ग्रह पर पानी की खोज में लगा है। बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पादप प्रजनन तकनीक द्वारा फसलों की अनेक उच्च उत्पादकता वाले किस्मों का विकास किया, जिससे खाद्य उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई कि उसे हरित क्रांति का नाम दिया गया। आज अनाज का इतना उत्पादन हो रहा है कि भंडारण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति आई, जो विज्ञान का विकास का ही परिणाम है। आज संकरण विधि द्वारा पशुओं के ऐसे नस्लों का विकास किया गया जो 3000 से 16000 लीटर तक प्रतिवर्ष दूध दे रही है। एक समय ऐसा भी था जब हैजा, प्लेग, चेचक, निमोनिया, टीबी, खसरा आदि से कितने लोग दम तोड़ देते थे। ये बीमारियां प्रचंड रूप धारण कर गांव एवं शहरों के एक बड़े हिस्से को मौत के गाल में धकेल देती थी। तब उसे महामारी की संज्ञा दी जाती थी। परंतु वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से विभिन्न प्रकार के टीकों, एंटीबायोटिक्स, विटामिन, हॉर्मोन्स एवं विभिन्न प्रकार के औषधियों का निर्माण हुआ और इन महामारी फैलाने वाले रोगों पर काबू पा लिया गया। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा आज आनुवांशिक एवं जन्मगत रोगों पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर पर अंग प्रत्यारोपण ही नहीं जीन रूपांतरण की विधि तक को विकसित कर लिया गया है। विज्ञान में विकास का ही परिणाम है कि आज रोगों की पहचान कुछ ही समय में कर ली जाती है। आज विभिन्न प्रकार की जांच पद्धतियां विकसित हो चुकी है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एलिसा टेस्ट, पीसीआर विधि आदि। आज जहां निसंतान दंपतियों के लिए संतान उत्पत्ति करने के लिए विधियों का विकास हुआ, वहीं अपने खोए संतानों एवं परिवारों की पहचान की तकनीक का विकास हुआ। वैज्ञानिकों ने आणविक ऊर्जा से लेकर सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा तक को विकसित किया, जिससे पूरा विश्व ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता गया। आज नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत शक्ति में परिवर्तित कर विद्युत को अधिक से अधिक सुलभ बनाया गया।

0: गया है। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग कृषि उद्योग धंधा चिकित्सा रोगों के उपचार यहाँ तक कि जीवाश्मों एवं मृत पेड़ पौधों जंतुओं चट्टानों की आयु को निर्धारित करने में किया जा रहा है। विज्ञान के इन विकासों से मानव में अमन चैन एवं शांति स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार विज्ञान आज इतना विकास कर चुका है कि उसका संपूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। कल्पना कर नहीं सका वह उड़ान जहां आज पहुंच चुका है विज्ञान। वैसे तो शांति मूलतः यौगिक शब्द है जिसकी प्राप्ति योग साधना से ही संभव है, जो विज्ञान का ही एक स्वरूप है। शांति की खोज कहीं बाहर नहीं करनी है, वह शांति आपके भीतर ही है। सुविधाएं आपकी जरूरतों को शांत कर सकती है, परंतु संपूर्ण शांति तो परमात्मा के शरण से ही प्राप्त हो सकती है, क्योंकि भोग विषय वासना संग्रह राग द्वेष आपको तो शांति प्रदान कर नहीं सकते। इसी प्रकार वास्तविक विज्ञान का विकास शांति प्रदत्त होनी चाहिए। विज्ञान के विकास का यही सार्थकता है कि वह संपूर्ण जीव जगत को शांतिमय बनाए रखे।
1: श्रोता भाई बहन, अभी हमने का डॉक्टर रमेश कुमार से वार्ता सुन लिया। विषय रहुए शांति विकास में विज्ञान के योगदान। बड़ा बढ़िया से यहाँ के बतौनी कि विज्ञान हमने के कितना योगदान कर रहा बा हमने के विकास में। तो इतना बढ़िया वार्ता सुनौला खातिर डॉक्टर रमेश कुमार के बहुत बहुत धन्यवाद। आ अब संदेश सुन लेवे के।
2: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देही ओके बुलंदियन के पांख।
3: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
2: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
3: आकाशवाणी का चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
2: त बुकिंग खातिर संपर्क करी 8700014242 पर।
3: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
1: श्रोता सभे अभी संदेश सुन लीजा। आ अब समय बा एक जानकारी के, जौन के हम कह रहे कि आज एक जानकारी के विषय बा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का महत्व। श्रोता सभे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस काहे मनावल जाला, कैसे मनावल जाला? देखी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 11 मई के मनावल जाला। जमन 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण भइल रहे ओकरे याद में ई दिन मनावल जाला। ई देश के तकनीकी उपलब्धि के सम्मान में मनावल जाला। आज के दिन ही स्वदेशी विमान हंसा 3 के पहला उड़ान आ त्रिशूल मिसाइल के सफल परीक्षण कैल गेल रहे। भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पहला बेरी 11 मई 1999 में मनावल गेल रहे। एकर उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिक आ इंजीनियर के तकनीकी उपलब्धि की याद कई करना बा। एकर उद्देश्य वैज्ञानिक सोच, तकनीकी नवाचार आ आत्मनिर्भरता में बढ़ावा दिहल बा। श्रोता भाई बहन, अब कुछ सलाह जान लिहल जाओ हमनी के। अगर हमनी का पशुपालन कैले बनी जा तो ओकरा खातिर अगर गाय बा, गाय रखले बनी जा तो बियाए वाला पशु के प्रसूतिक बुखार से बचावे खातिर खनिज मिश्रण 50-60 ग्राम प्रतिदिन दही। आ दूध देवे वाला पशु के खनिज मिश्रण 10 ग्राम प्रति लीटर दूध के दर से दी। गाय के 400 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन आ भैंस के 500 ग्राम दाना प्रति किलो दूध उत्पादन के दर से दी। हरा चारा 20 से 25 किलो प्रति पशु प्रतिदिन जरूर खिलाएं। मौसम संबंधी चेतावनी ईबा कि जिला के 1-2 स्थान पर आंधी तूफान के साथ बिजली चमके आ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तेज हवा चले के संभावना बा। एकरा अलावे फसल विशिष्ट सलाह मूंग खातिर ई बा कि मूंग आ उड़द के फसल में रस चूसक कीट

माहू, हरा फुदका, सफ़ेद मक्खी आ थ्रिप्स कीट के निगरानी करत रहीं। बचाव खातिर मैलाथियान 50 ईसी चाहे डाईमेथोएट 30 ईसी के 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के दर से फसल में छिड़काव वर्षा ना होके तब करी। एकरा अलावे भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 9 से 13 मई के दौरान जिला में 1-2 स्थान पर गरज आ चमक के साथे साथे आंधी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकेला। एकरा में हल्का मध्यम वर्षा होखे के भी अनुमान बा। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड आ न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% आ दोपहर में 30 से 35% रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान के अवधि में 15 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना बा। श्रोता भाई बहन, अब घड़ी कह रहल बा कि कार्यक्रम के समय उड़ा रहल बा, तो अब आज्ञा दही चले चले का बेरी गांव घर कार्यक्रम सुने वाला सब श्रोता भाई बहन के दिनु भाई के तरफ से राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीतों का। और कार्यक्रम है सांझ गीते। सांझ गीत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म गंगा जमुना सरस्वती से। आवाज़ें हैं मोहन राठौड़ और उदित नारायण की। प्यारे लाल यादव के गीत हैं और संगीत हैं राजेश रजनीश के।

सांस्कृतिक कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, मोहन राठौर और उदित नारायण की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था गंगा जमुना सरस्वती। प्यारे लाल यादों के गीत थे और संगीत दिया था राजेश रजनीश ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं तृप्ति शाक्या की मधुर आवाज़ में। फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल। प्यारे लाल यादों के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है अशोक कुमार दीप के।

सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना साजन चले ससुराल फिल्म का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत है। आवाज़ थी तृप्ति शाक्या के, प्यारे लाल यादव के शब्द थे और संगीत दिया था अशोक कुमार दीप ने। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म परिवार का यह खूबसूरत भोजपुरी गीत। इसे लिखा है विनय बिहारी ने और संगीत दिया है धनंजय मिश्रा ने।

श्रोताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में अभी आपने सुना उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज़ों में फिल्म परिवार का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब लेते हैं आनंद इससे बेहतरीन भोजपुरी गीत का। आवाज़ है उषा मंगेशकर की, फिल्म का नाम है गंगा किनारे मोरा गांव, शब्द लक्ष्मण शाहबादी के हैं और संगीत दिया है चित्र गुप्त ने।

अब सांस्कृतिक कार्यक्रम का अगला और आखिरी पेशकश हेमलता की आवाज़ में, फिल्म का नाम है नदिया के पार, गीत और संगीत हैं रविंद्र जैन के।

0: हेमलता द्वारा गाए इसी भोजपुरी गीत के साथ है भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत अब यहीं संपन्न होता है। सांझ गीत कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बज चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: बुनियाद।
1: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। बुनियाद कार्यक्रम का समय हो गया है और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ इस सप्ताह का बुनियाद लेकर। वर्षों से ये कार्यक्रम आपके लिए राजेश लेकर आ रहा है और बातें करते हैं इसमें युवाओं, आपसे, आपके माता पिता से, छोटे छोटे जो भाई बहन हैं वो भी इस कार्यक्रम को सुनते हैं और उन्हें जीवन में क्या करना है उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दो तीन बातें मुख्य रूप से कहते हैं कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए, टेक्निकल पढ़ाई के किसी भी कोर्स को चुनिए अपनी मर्जी से और फिर ध्यान लगाकर पढ़िए और पढ़ते पढ़ते ही संभवतः आपको रोजगार मिल जाए या पास आउट होने के बाद, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करनी होगी। और दूसरी बहुत बड़ी बात कि अगर किसी नेशनल कंपटीशन को आपने कम्पीट नहीं किया है तो बाहर, बिहार से बाहर, झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। और बिहार में, झारखंड में बहुत कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाई जाती है। और आपको बताएं कि नेशनल कंपटीशन से भी अगर जो आप कम्पीट करते हैं तो बिहार में भी उसके कॉलेजेस हैं। मसलन अगर आपने क्लैट को क्रैक किया तो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ जो ऑटोनोमस है वो है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ 13-14 टेक्निकल पढ़ाई कराई जाती है जिसमें मेडिकल से लेकर पैरामेडिकल, नर्सिंग या फिर एग्रीकल्चर की बात करें, फार्मेसी की बात करें, कुछ भी करें, यहाँ पढ़ाई होती है। बायोलॉजी से अगर आपने इंटरमीडिएट किया है, इसके अलावे अगर जो आप लॉ करना चाहें 5 ईयर या फिर 3 ईयर, या जर्नलिज्म करना चाहें या मैनेजमेंट करना चाहें, या अगर आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है, किताबों से शौक है, तो आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारे स्कोप हैं। नोट कीजिए वहां का नंबर, नंबर है 9431899002, 9431899002। टोल फ्री नंबर है 1800121005। और एक वेबसाइट है www.gnsu.ac.in। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आया है बीएड स्पेशल एडुकेशन। हाँ, जैसे बीएड होता है ना, बीएड होता है उसी तरीके से, उससे भी ऊपर का कोर्स है बीएड स्पेशल एडुकेशन। 9431899002 पर पता कर लें। जी हाँ, इसके अलावा ढेर सारे कोर्सेज हैं, जो मर्जी आए चुन ले। आज मैंने किसी प्रोफेसर को नहीं बुलाया, डीन को नहीं बुलाया या फिर रजिस्ट्रार

0: स्पीकर साहब को नहीं बुलाया या वाइस चांसलर को भी हमने गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के नहीं बुलाया। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं बीबीए और एमबीए के स्टूडेंट, जिसमें पूनम है, सिल्की है, यशवी है, आराधना शाही है, जागृति है या फिर पलक है, बहुत सारे लोग हैं। इनसे आज बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपना करियर क्यों चुना है, क्या इन्हें लगता है कि इसकी पढ़ाई कर लें तो रोजगार मिल जाएगा, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय का जो कॉलेजेस है जमुआर, सासाराम, रोहतास, बिहार में, उसमें क्या क्या है, क्या ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी इनके लिए फायदेमंद है और आपके लिए ये यूनिवर्सिटी कैसी है। इसके लिए सबसे पहले बुलाते हैं पूनम गुप्ता आपको, आ जाइए, माइक्रोफोन आपका और सारे लिसनर्स आपके हैं।
1: नमस्कार, मैं पूनम गुप्ता बीबीए की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैंने इसलिए बीबीए चूज किया क्योंकि मुझे मैनेजमेंट में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने जब मैंने अपने घर से पास में जब मैंने यूनिवर्सिटी के लिए देखने के लिए ढूंढा तो मुझे पता चला कि गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर मैनेजमेंट। तो जब मैंने यहाँ पे आया पढ़ा तो मेरे लिए फुल्ली सैटिस्फाइड थे, मेरे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई मिले क्योंकि यहाँ के इन्वायरमेंट, फैकल्टी इतने सपोर्टिव है। अगर आप कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या फिर कुछ है तो आप सिर्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। यहाँ के फैकल्टी सारे स्ट्रीम्स को फुल्ली अच्छे से ट्रीट करके अच्छे से समझाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उनको प्रॉब्लम होता है कि वो आर्ट्स से ह्यूमैनिटी से हैं तो उन्हें अकाउंटिंग में प्रॉब्लम हो या आगे फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हो, उन्हें काफ़ी अच्छा स्कोप और काफ़ी अच्छा गाइड किया जाता है। ऑल्दो इसके साथ साथ उन्हें स्किल्स का भी आगे अपॉर्चुनिटी है और वो स्पोर्ट्स में भी आगे जा सकते हैं। हमारी और ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आगे जाती है उन्हें और ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और जिन्हें भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो वो DRCC से भी अपना यहाँ पे पढ़ के यहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं मैनेजमेंट करना तो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी बेस्ट है।
0: वाह, क्या बात है पूनम जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। सिल्की, आप क्या कहना चाहिएगा?
2: नमस्कार, मैं सिल्की गुप्ता गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी की MBA की स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ स्टडी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ स्टडी पे ही नहीं बल्कि सेल्फ डेवलपमेंट पे भी पूरा ध्यान दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, ये सब चीज़ों को मिलाकर एक ओवरऑल अच्छे पर्सनालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। मैनेजमेंट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ही फायदेमंद होता है क्योंकि हमें कॉरपोरेट में इस चीज़ों पे काम करना होता है। हमारे यहाँ सिर्फ स्टडी ही नहीं स्पोर्ट्स में भी बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ पे हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। एक अच्छा सा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, अच्छा इन्वायरमेंट के साथ साथ डिसिप्लिन मेंटेन कराया जाता है और हमारे यहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अच्छी होती है। हमारे यहाँ हर स्टूडेंट पे अच्छे से ध्यान दिया जाता है, हर चीज़ को सही करने के लिए मेंटर मेंटीज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि किसी भी बच्चे को अपना सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। हम तो यहाँ आकर अपना करियर बना लिए, आप कब आ रहे हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में आपको एक बार ज़रूर विजिट करना चाहिए। थैंक यू।
0: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूँ राजेश और हमारा नंबर नोट कर लीजिए जहाँ आप जानकारियाँ ले सकते हैं, 9431899002 9431899002, और एक टोल फ्री है 1800 121 0051 और www.gnsu.ac.in। जी हाँ, ये वेबसाइट का पता है। इसके अलावे आइए बातें सुनते हैं यशवी से जो बीबीए की स्टूडेंट है।
3: नमस्कार, मैं यशवी हूँ, मैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की बीबीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैंने गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी इसलिए चूज किया है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे डाउट हो तो मेंटर मेंटी की

0: फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड किया जाता है हमारे पढ़ने के लिए, इंटर्नशिप के लिए बाहर भेजा जाता है, हॉस्टल्स की सुविधा भी है। पैसे की बात है तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी फैसिलिटी यहाँ दी जाती है। और आप अभी तक घर पे बैठे हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि अगर आप मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आना चाहिए।
1: बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया यशवी कि आपने क्यों बीबीए लिया और यहाँ क्या मिलेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आराधना शाही है हमारे साथ। आराधना, अपनी बात बताइए सुनने वालों को, करोड़ों लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं।
2: नमस्कार, प्रणाम, मैं आराधना शाही गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी की थर्ड ईयर की छात्र हूँ। मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था क्योंकि मुझे एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए था जहाँ पे हम लोगों को बस थ्योरेटिकल ही नहीं प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले। एंड जब मैं यहाँ पे आई अपना एजुकेशन गेन करने के लिए, तब मुझे यहाँ पे ये फील हुआ कि हमारे जो फैकल्टी हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, यहाँ पे बस थ्योरेटिकल नॉलेज पे कभी फोकस नहीं करते हैं। ये लोग हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अभी आपने जस्ट 12 पास आउट किया है, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे एक ऐसा यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ पे हम लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिले, अच्छे से हम लोग ग्रो करें, एंड अगर आप एक लड़की हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारा घर दूर है, मुझे हॉस्टल चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए, तो ये कॉलेज आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मैं खुद हॉस्टल में रहती हूँ और यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है हॉस्टल में। एंड यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमारे पास इनफ पैसे नहीं है तो हम लोग यहाँ पे कैसे एजुकेशन गेन करेंगे, तो आप यहाँ पे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको लोन मिलेगा एंड आप उसके हेल्प से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आप जब यहाँ पे आओगे, आपको हमारा यूनिवर्सिटी मेक श्योर करता है कि आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो और आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने करियर में ग्रो करो। ये कॉलेज मुझे तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करवाया है। एंड मैं आज जहाँ भी हूँ एक अच्छे प्लेस पे हूँ एंड अपने कॉलेज के वजह से हूँ, तो मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। अगर आप अच्छे अपने करियर में अच्छा करना चाहते हो तो आप ज़रूर आइए हमारे कॉलेज में। थैंक यू सो मच।
1: आराधना शाही ने बहुत अच्छे तरीके से कहा, बुनियाद कार्यक्रम चल रहा है और अब बारी है जागृति की। पलक, इंतजार कीजिए आप, जागृति बीबीए की स्टूडेंट है। जागृति, क्या कहना चाहिएगा?
3: नमस्कार, मैं जागृति कुमारी बोल रही हूँ। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, सेकेंड सेमेस्टर गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ईयर पे आया तो मैंने जाना कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, यहाँ के टीचर्स बहुत फ्रेंडली थे, यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत फ्रेंडली थे। ये हमारी बहुत अच्छा एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट मिला। यहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटीज़ है, यहाँ पे स्पोर्ट्स की भी फैसिलिटी है, जो स्टूडेंट्स का ज़्यादा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो भी अपना ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है स्किल डेवलपमेंट, प्रेजेंटेशन एंड अदर थिंग, जो फैकल्टीज़ की भी यहाँ पे बहुत सुविधा है। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा है जिसके द्वारा से हम स्टूडेंट आगे से आगे बढ़ सके, प्लेसमेंट के थ्रू आगे बढ़ सके और यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर सके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कि आप यहाँ आए। साथियों, हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा था, युवाओं ध्यान दीजिएगा कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय लगातार ऐसे कोर्सेज की खोज करता रहता है जिसमें आपके लिए रोजगार की असीम संभावनाएं हों। टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसा कि हमने बताया था कि बीएड तो था ही, बीएड स्पेशल एजुकेशन लेके आया था और अब तीन कोर्सेज और नए आए हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया है। आने वाले एपिसोड्स में हम उसके बारे में जानकारी देंगे। आज लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आने वाले सोमवार को मिस नहीं करना है, जिसमें एक कोर्स है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी। दूसरा कोर्स आपके लिए है, जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। और तीसरा कोर्स है बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, जी हाँ, यही कोर्स है। ये तीन नए कोर्स अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जिसमें सीटों की संख्या बहुत कम है, करियर अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगले एपिसोड में, यानी आने वाले सोमवार में, एक एक करके हम इसके विषय में जानकारी

0: और फिर आपके कोई सवाल होंगे तो फिर दोबारा भी बताएंगे। तो बस ये हमारा उद्देश्य है कि आप आगे बढ़ें और बढ़ते चले जाएं। अब आपकी बारी है, इसके लिए आप डायल कर सकते हैं 9431899002, 9431899002, और टोल फ्री नंबर है 1800121005, 1800121005, और वेबसाइट का पता है www.gnsu.ac.in। थैंक यू कहना चाहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास को कि जिन्होंने अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का आपके राजेश को मौका दिया और जानकारियां आप तक पहुंची। तो चलते हैं, अगले सोमवार को फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास।

गुड इवनिंग रोहतास कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं को मेरा गुड इवनिंग। श्रोताओं, तो आइए सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं रोहतास और कैमूर ज़िले की आज की गतिविधि पर। श्रोताओं, जिला प्रशासन कैमूर द्वारा जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कैमूर जिले के सभी कार्यालयों में जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर पंचायती तक के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित किया। जिला पदाधिकारी महोदय के जनता दरबार में विभिन्न विभाग से संबंधित 19 आवेदन प्राप्त हुए, जिसका नियमानुसार त्वरित निष्पादन के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। ऑनलाइन पोर्टल पर किए गए प्रविष्टि के अनुसार आज अब तक जिला मुख्यालय स्तर पर कुल 28 अधिकारियों ने 38 नागरिकों के साथ संवाद स्थापित किया। जिले के कुल 11 प्रखंडों में 55 अधिकारियों की उपस्थिति रही, जहाँ 80 नागरिकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। थानों में आयोजित संवाद कार्यक्रमों में 10 अधिकारियों ने 47 नागरिकों के साथ संवाद किया। सबसे व्यापक प्रभाव पंचायत स्तर पर देखा गया, जहां 101 अधिकारियों ने कुल 298 नागरिकों से सीधा संपर्क स्थापित किया। श्रोता, विकसित बिहार की ओर से और एक और कदम सहयोग पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर 1100 का भव्य शुभारंभ किया गया। कोई भी व्यक्ति sahyog.bihar.government.in पर जाकर सीधे अपना परिवाद यानी कि शिकायत दर्ज कर सकता है। टोल फ्री नंबर 1100 पर कॉल करके शिविर से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। दर्ज शिकायतों का निष्पादन 30 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा और आवेदक को इसके लिखित सूचना भी दी जाएगी। बिहार सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु आज एक महत्वपूर्ण पहल की गई। मुख्यमंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी द्वारा सहयोग पोर्टल एवं सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 का विधिवत लोकार्पण किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत लोगों की शिकायतों को प्रभावी निपटारा करना है। जिला प्रशासन रोहतास की आम जन से अपील है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग हेल्पलाइन एवं सहयोग पोर्टल का आधिकारिक उपयोग करें और सरकार की इन जनोपयोगी पहल का लाभ उठाएं। तो श्रोताओं, अब आइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक संदेश और

0: इश्क के बाद सुनेंगे बाजीराव मस्तानी फिल्म का एक बेहतरीन गीत।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

इस गीत को संगीत से सजाया है संजय लीला भंसाली ने, आवाजें हैं श्रेया घोषाल, गणेश और मुस्तफा की, सिद्धार्थ गरिमा और नासिर फराज के शब्द हैं।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ संपन्न होता है आज का गुड इवनिंग रोहतास का यह एपिसोड।

इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:25 होने वाले हैं। अब थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294, हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042, हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
3: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
1: आकाशवाणी।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाश।

वाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को 1 जुलाई से लागू करने की अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों को 48 घंटे के अंदर दिया जाएगा जवाब। और केंद्र सरकार ने कहा, देश में 60 दिन के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन के LPG का भंडार उपलब्ध है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान और लोक शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सहयोग पोर्टल की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में पोर्टल का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पोर्टल पर दर्ज शिकायत का 30 दिनों में निष्पादन कर आवेदक को लिखित सूचना दी जाएगी। श्री चौधरी ने बताया कि जो लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सक्षम नहीं है, वे सहयोग हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
2: कोई यदि कष्ट में जा रहा है, उसके निष्पादन के लिए पोर्टल बनाया गया और शुभ नंबर है 1100 नंबर डाला गया, तो बिहार की जनता को इसका पूरा लाभ मिले। ये ऑनलाइन भी हो, ऑनलाइन ऑर्डर भी निकले, फिजिकल यदि दे सकते हैं तो उनको ऑर्डर कॉपी दे, लेकिन ऑनलाइन को ऑर्डर निकालकर उनको तुरंत भेजने का काम करे। और पंचायत में लगना है तो आम लोगों को इसका सुविधा मिल सके, ये सारी चीजों को हमको इंश्योर करना है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग पहल के तहत महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में मंदिरी नाला नवीन किशोर सिन्हा पथ का लोकार्पण किया। पटना स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस पथ से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद नितिन नवीन भी मौजूद।

0: उतरे। इधर विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने मंदिरी नाला सड़क का नामकरण नवीन किशोर सिन्हा पथ करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध नियंत्रण और सुशासन की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज पटना में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों को 48 घंटे के अंदर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अपराधी कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
1: कानून का राज है साथी, मैंने जरूर ये पुलिस को हाथ खोल दिया, सुशासन न्याय के साथ विकास कर रहा, लेकिन

0: पुलिस भी जवाब देने का काम करेगा सर। और यदि इंडस्ट्री को लाना है तो बिहार में सुशासन को और गति से बढ़ाना पड़ेगा। कोई अपराधी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और अपराध मुक्त बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे, इससे कभी समझौता नहीं कर सकते।
1: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज पदभार ग्रहण किया। श्री सिन्हा ने कहा कि विभागीय योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने एग्री स्टैक परियोजना के तहत कल से 30 जून तक फार्मर्स रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की। खनन एवं भूतत्व विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने भी आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: पहली प्राथमिकता रहेगी पारदर्शिता के साथ काम हो, और कभी कभी शिकायतें मिलती है कि अवैध रूप से बालू का खनन हो रहा है, ओवरलोड गाड़ियां जा रही है, कुछ हमारे पदाधिकारी भी उसमें संलिप्त रहते हैं, कुछ ऐसे माफिया भी संलिप्त रहते हैं, तो सबको मैं चेतावनी देता हूं कि वो सतर्क हो जाएं। जो गड़बड़ करेंगे उनको फिर बचेंगे नहीं, उन पर कार्रवाई होगी।
1: भाजपा के सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा ने आज बिहार विधान परिषद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। पूर्व मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में वे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। विधान परिषद की भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 4 बजे तक चलेगा। उपचुनाव में कुल 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यह सीट पूर्व MLC राधा चरण साह के विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद रिक्त हुई थी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। देश के पास 60 दिन के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन के LPG का भंडार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में पश्चिम एशिया पर मंत्रियों के अनौपचारिक समूह की 5वीं बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोगों से पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा बचाने का संकल्प लेने की अपील की है।
3: देशवासियों से जो PM ने अपील की, हमारी विदेशी मुद्रा खर्च जिन चीजों में होता है, तेल में सबसे ज्यादा होता है, क्या हम नई गाड़ी खरीद सकते हैं तो EV खरीदें, मेट्रो से चले, बस से चले, और LPG और PNG के बदले इंडक्शन चूल्हा जलाएं, अगर हो सके तो सोलर प्लेट लगाएं।
1: इधर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच लोगों को पेट्रोलियम उत्पादों के इस्तेमाल में अनुशासन बरतने का संकल्प लेना चाहिए।
4: वैश्विक समस्या है, सभी जगह पे दिक्कत हो रही है, हर देश में रेशनिंग का काम आज हो रहा है, उसी तरीके से रेशनिंग करने की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है। कुछ समस्या आती है तो समय थोड़ा अनुशासित होकर अगर हम लोग समस्या को झेल जाते हैं तो फिर आने वाले समय के लिए बेहतर होता है, अर्थव्यवस्था और बेहतर होकर उभरेगी और मजबूत होकर उभरेगी।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
5: इधर आइए, इधर
6: इधर,
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभ वाणी,
7: आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना को फॉलो

0: कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ अमृत पर्व के अवसर पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार मंदिर के शिखर पर 11 तीर्थ स्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है।
1: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया कि सोमनाथ अमृत पर्व सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के खाजपुरा स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। नई दिल्ली के मुंडका पक्करवाला टोल प्लाजा पर मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर रहित टोल संग्रह प्रणाली की आज से शुरुआत हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली से वाहनों को रोके बिना टोल टैक्स स्वचालित रूप से काट लिया जाएगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा कि वर्तमान समय में जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। मगध महिला कॉलेज पटना के वार्षिकोत्सव उड़ान को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय सेना में महिलाओं की नेतृत्वकारी भूमिका का उल्लेख किया। श्री हसनैन ने छात्राओं से अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करने की अपील की। पश्चिम चंपारण जिले के रामनगर स्थित खटोरी गांव में पूर्वोत्तर भारत के पहले हाईटेक हैचरी प्लांट का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय खनन और कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने इस प्लांट का उद्घाटन किया। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम होने से प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। वहीं अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है।
2: दिनांक 12 मई राज्य के उत्तरी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिणी भाग के जिलों में 1-2 स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: भागलपुर जिले के अजगैबीनाथ धाम के नमामि गंगे घाट पर नहाने के दौरान डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत नरोली बालकरी से 10 बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। दरभंगा जिले के बहरी बाजार स्थित एक स्टूडियो में पुलिस ने छापेमारी कर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का उद्भेदन किया है। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पूर्वी चंपारण जिले के चितना थाना क्षेत्र अंतर्गत अगरवा गांव से पुलिस और एसएसबी की टीम ने 2 किलो 700 ग्राम के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र के भूतनाथ रोड स्थित एक फ्लैट में पुलिस ने छापेमारी कर 46 कार्टन शराब के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। सारण में 2 और गया, मुंगेर तथा रोहतास जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम को 1 जुलाई से लागू करने की अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार ने आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग पोर्टल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पुलिस को चुनौती देने वाले अपराधियों को 48 घंटे के अंदर दिया जाएगा जवाब। और केंद्र सरकार ने कहा, देश में 60 दिन के कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन के LPG का भंडार उपलब्ध है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित

0: प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: इधर आइए, इधर।
2: इधर?
1: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
3: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
3: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patna@gmail.com।
3: शुभवाणी,
2: लाभवाणी,
1: आकाशवाणी।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है सुपौल जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता रविशंकर चौधरी।
4: सुपौल व्यवहार न्यायालय परिसर में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान 16 समझौते के आधार पर मामलों के निष्पादन के लिए कुल 21 बेंच का गठन किया गया। इनमें सुपौल न्याय मंडल में 12 बेंच, वीरपुर अनुमंडलीय न्यायालय में 5 बेंच तथा ट्रैफिक चालान मामलों के निष्पादन के लिए टाउन हॉल में 4 विशेष बेंच बनाई गई थी, जिसमें सुलहनीय आपराधिक मामलों, वाहन दुर्घटना दावा, चेक बाउंस, बैंक ऋण, बिजली विभाग से संबंधित मामलों सहित विभिन्न वादों का त्वरित और निःशुल्क निष्पादन किया गया। वहीं पक्षकारों की सहायता और समस्याओं के समाधान के लिए ओल्ड बिल्डिंग और न्यू बिल्डिंग परिसर में हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए। लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और आपसी सहमति के आधार पर सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया। इधर पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू ने बीते दिनों सुपौल जिले के निर्मली और वीरपुर अनुमंडल में नवनिर्मित व्यवहार न्यायालय भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह सुपौल निरीक्षक न्यायमूर्ति पूर्णेंदु सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत कुमार सिंह, जिलाधिकारी सावन कुमार तथा पुलिस अधीक्षक शरद आर्य सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह के दौरान अतिथियों का मिथिला परंपरा के अनुसार पाग और माला पहनाकर स्वागत किया गया। नए न्यायालय भवनों के शुरू होने से अब स्थानीय लोगों को छोटे मोटे मामलों के लिए सुपौल नहीं जाना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले दिनों जिले में तेज आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। तेज हवाओं के चलते कई स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटकर गिर गई और बिजली के खंभे भी उखड़ गए। इससे यातायात प्रभावित हुआ तथा कुछ इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। वहीं मूसलाधार बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि बारिश के कारण मौसम के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, इससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। विक्रमशिला पुल के एक हिस्से के क्षतिग्रस्त होने के कारण यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पूर्व मध्य रेल ने सुपौल के सरायगढ़ जंक्शन से देवघर तक अनारक्षित विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। समस्तीपुर मंडल द्वारा गाड़ी संख्या 05573 एवं 05574 सरायगढ़ देवघर सरायगढ़ अनारक्षित विशेष ट्रेन का परिचालन 7 मई से शुरू किया है, जो 31 मई 2026 तक प्रतिदिन चलेगी। यह विशेष ट्रेन सुपौल सहरसा सिमरी बख्तियारपुर मानसी खगड़िया सबदलपुर मुंगेर सुल्तानगंज भागलपुर और बांका होते हुए देवघर तक जाएगी। बीते दिनों राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों एवं जिले के विभिन्न विकास योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, गश्त बढ़ाने तथा संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी सावन कुमार ने बताया कि मुख्य सचिव ने वीरपुर एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति की जानकारी ली। इसके साथ ही जिले में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं की भी समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
5: फिजिकल मॉडलिंग सेंटर है, उस पर चर्चा की गई कि उसको कैसे जल्दी से जल्दी शुरुआत करना है टारगेट लेकर। इसके अलावा उसके बारे में विस्तृत

0: स्टेशन था, और दूसरा था जो बीरपुर एयरपोर्ट बन रहा है, इसका जमीन एक्विजिशन में क्या स्टेटस है और जब टर्मिनल बिल्डिंग कब शुरू होगा ये होगा। इसके अलावा और जिले की जो अलग अलग विकासात्मक गतिविधियां थी उस पर और बॉर्डर संबंधी सब पर पे।
1: जिले में रसोई गैस की उपलब्धता पूरी तरह सामान्य है और आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि जिले की कुल 51 गैस एजेंसियों के पास लगभग 13,394 गैस सिलेंडरों का भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिले में प्रतिदिन औसतन 5,601 घरेलू LPG सिलेंडरों का वितरण किया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। आय से अधिक संपत्ति के मामले में निबंधन कार्यालय सुपौल में पदस्थापित अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उनके कार्यालय और किराए के मकान में छापेमारी की। जांच के दौरान EOU को अमरेंद्र कुमार के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साक्ष्य मिले हैं। प्रारंभिक जाँच में उनके पास लगभग 1,10,64,000 रूपए की आय से अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है, जो उनकी आय से करीब 65.08% अधिक बताई जा रही है। EOU की टीम मामले से जुड़ी दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच में जुटी हुई है।
2: अभी आप सुन रहे थे सुपौल जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता रवि शंकर चौधरी।
3: मीडियम वेव 483.5।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। श्रोता, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:51 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद।

फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। गीतों के आज के इस सफ़र को आप तय करेंगे अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ। सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, चलिए करते हैं शुरुआत हम इस कार्यक्रम की एक बेहतरीन फिल्मी नगमे से। फिल्म का नाम है हिना, आवाज़ लता मंगेशकर की है, गीतकार हैं नक्श लॉयलपुरी और संगीत दिया है रविंद्र जैन ने।

श्रोताई मनपसंद कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म हीना से, आवाज़ थी लता मंगेशकर की, नक्श लायलपुरी के शब्द थे और रविंद्र दैन ने इसे संगीत से नवाजा था। इस गीत को पसंद करने वाले आप सभी पसंद करता हैं। साहू नगर यवतमाल से राहुल, मनवर सरला, मनवर विशाल, मनवर चेतन, मनवर रोशनी और मनवर बेबी प्रियांशी। इसी गीत को सुनने के लिए हमें ईमेल संदेश किया है SM जावेद, सगुफ्ता और अंजुम, ये गुमला झारखंड से हैं। मंसूरी रोडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविश्ता मोहम्मद, नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, नेहरू पार्क निजामाबाद।

तेलंगाना से अजीत भाई, मतीन भाई, शेख चंद्रे, फारूक फुलवाले, सैयद खलील, मुबीन भाई, एमडी यासीन और मूसा करीम। श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म मेला का यह खूबसूरत गीत, जिसे गाया है मुकेश ने। गुलाम मोहम्मद ने इस गीत को शब्दों में पिरोया है और नौशाद ने इसे संगीत से सजाया है। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं। ग्राम व पोस्ट मुंगीलापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार। तो लीजिए, पेश है आप सबों की फरमाइश पर फिल्म मेला का यह खूबसूरत गीत। आवाज़ है मुकेश की।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी आपने सुना फिल्म मेला का यह खूबसूरत गीत है, जिसे गाया था मुकेश ने। गुलाम मोहम्मद के शब्द थे और संगीत था नौशाद का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दाग द फायर से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, शब्द समीर के हैं और संगीत निर्देशन है राजेश रोशन के। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं चौसा गोला बक्सर से जयराम बिंद, सीतामुनि देवी, लालसा कुमारी, काजल कुमारी, प्रद्युम्न और प्रीतम कुमार, और जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश गढ़मुक्तेश्वर काकानेर की मड़िया से राजकुमार, जानकी देवी, पुनीत कुमार और सपना कुमारी, नूर महल महसौल सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहानाज शिक्षिका, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, और कोआत बिहार से नरगिस जफर, कलेर बिहार से बेगम निखत परवीन।

उदित नारायण और अलका याग्निक के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म दाग द फायर का यह बेहतरीन गीत। शब्द थे समीर के और संगीत निर्देशन था राजेश रोशन के। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म कश्मीर की कली से मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, SH बिहारी के शब्द हैं और धुन बनाई है OP नैयर ने। पसंद करता है जिला मऊ उत्तर प्रदेश से UA अंसारी, AK अंसारी, AA अंसारी, SP अंसारी और गुड़िया अंसारी। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। करणवीर हाउस से भूचों कैंचिया बठिंडा पंजाब से परम सिंह जौड़ा, मनजोत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दमन और अभिजीत।

बिहारी के शब्द थे। संगीत था ओपी नैयर साहब का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगला गीत है, आइए सुनते हैं फिल्म कामचोर से आवाज़ें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, शब्द है इंदिवर के और संगीत निर्देशन है राजेश रोशन के।

कश्मीर की कली। जी हाँ श्रोताओं, अभी आपने इस फिल्म का यह बेहतरीन गाना सुना। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। SHB

इस गीत को सुनना चाहते हैं बक्सर से सरफुद्दीन अंसारी और मोहम्मद सुल्तान अंसारी, बिहार स्टेट डुमराव से आसमा अंसारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वली उल्ला अंसारी, और गाजियाबाद से सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी, और डोंडी छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा डोमिन, बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से वसीम अकरम, साबेहा खातून और गुड़िया खातून।

यह खूबसूरत गीत थे अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था कामचोर। इंदिवर के शब्द थे और संगीत दिया था राजेश रोशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है कुमार सानू की आवाज़ में, फिल्म का नाम है साजन की बाहों में। समीर के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का। पसंद करने वाले आप सभी हैं। मुजफ्फरपुर से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी, दत्रेंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा।

की समीर के शब्द थे और संगीत निर्देशन था नदीम श्रवण का। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में बरखा फिल्म का यह खूबसूरत नगमा, जिसे लिखा है राजेंद्र किशन ने और संगीत दिया है चित्रगुप्त ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं ओल्ड निशनर से कांति निकेतन, राजनगर मधुबनी कुशेश्वर कांति निकेतन से मास्टर रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता, कोमल गुप्ता, ऐशबाग लखनऊ से रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता, कुसुम और रूपा इलाहाबादी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पद्मा टॉकीज, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह।

राम बलराम का यह खूबसूरत गीत आवाज़ें किशोर कुमार लता मंगेशकर की हैं। क्षमा करेंगे, आशा भोसले की हैं। आनंद बख्शी साहब के शब्द हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब ई मनपसंद कार्यक्रम की आखिरी पेशकश है। पसंद करने वाले आप सभी हैं नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी पांडे, रुचि कुमारी, मदनेश्वर सिंह, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम सौरभ, अर्पित, हर्षित, वैभव, लीला, सीतामुनि देवी, जयराम बिंद और वीरेंद्र पांडे, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुहेरकर। तो लीजिए पेश है फिल्म।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का यह सिलसिला अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम का आज का यह गीतों भरा सफर आपने तय किया अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, अगले एपिसोड में श्रोताओं के फरमाइशी गानों के साथ हम कार्यक्रम ई मनपसंद को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक

0: बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की

0: खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
2: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
3: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
2: अवेलेबिलिटी आफ्टर द क्राइसिस सिचुएशन।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है। बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन

0: कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री शर्मा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95 रुपए 31 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है एफएम बैंड 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बज चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम। लोकधारा का पहला लोकगीत टुकु पाठक की आवाज में।

लोकधारा कार्यक्रम में पहला लोकगीत अभी आपने सुना टुकू पाठक की आवाज में। आइए सुनते हैं अगला लोकगीत नीलेश्वर मिश्रा की आवाज में।

लोकधारा कार्यक्रम का अगला और अंतिम लोकगीत केशरी नंदन भगत और साथियों के स्वर में।

तो श्रोताओं, इसी के साथ है लोकधारा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम वंदगी आवाज़ है राजा सोनू अली खान और नीतू सिंह की। गीतकार हैं तस्लीम खान और संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

तो श्रोताओं, इसी के साथ है कार्यक्रम बंदगी अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
1: संगीतकार नौशाद।
0: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है।

0: कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार।

सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे

0: भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन्स होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे, और इसकी कंपटीशन थी। और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था, मुझे मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला, और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा, और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कंपटीशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा, और उसमें मैंने एक नाटक किया काई स्वप्ने विकाई चित, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

0: मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के जाने माने मराठी अदाकार अविनाश मसूरेकर और भक्ति बर्वे, जो बाद में भक्ति बर्वे इनामदार बनी, इनके साथ वो काम करते थे। तो इस ड्रामे में जो वो कर रहे थे हैंड्सअप में, इस नाटक को देखा जाने माने निर्देशक गोविंद देलानी ने भी। सदाशिव अमरापुरकर की एक्टिंग से निर्देशक गोविंद देलानी बड़े ही प्रभावित हुए और उन्हें अपनी फिल्म अर्धसत्य में अदाकारी करने का मौका दिया। फिल्म अर्धसत्य काफ़ी लोकप्रिय हुई और उनका रामा शेट्टी का किरदार भी बड़ा ही कामयाब रहा। हिंदी सिने जगत को सदाशिव अमरापुरकर के रूप में मिला एक खलनायक, ऐसा खलनायक जो अपनी अनोखी डायलॉग डिलीवरी से देखने वालों का दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानें।
1: तेंदुलकर जी के 4-5 नाटक किए हैं, हैंड्सअप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्धसत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पर बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया, इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, 2-2.5 सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।

सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया।

सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्ध

0: की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख, मेरे तो बाल खड़े हो गए, हाथ पे जान निकल गई मेरी। ओ, क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देख ना रूप ना रंग, देख ये किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। हाँ, कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
2: ये सब क्या है चाचा, चलो यहाँ से।
1: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है, किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। हाँ, तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए, इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
2: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
1: रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब।
0: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुंचे इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गाँव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार मुंबई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया और उसके बाद मैं

0: तक मैं एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
1: अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? साले उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए।
2: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
1: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
2: अच्छा अच्छा,
1: आ गया हसमुख, आ गया, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
3: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
1: पागल हो गया, पागल हो गया, मेरा दोस्त पागल हो गया।
3: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
1: कैसे?
3: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
1: क्या?
3: हाँ।
1: किसको?
3: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
1: हाँ।
3: उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
1: कॉन्ग्रेचुलेशन। ए आंडो पांडो।
2: यस सर।
1: ये ले, ये 10 रुपए ले, मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
4: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्या मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
1: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
5: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।

0: ये जाए।
1: कूली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज़।

0: आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब लीजिए पेश है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है शीला सिंह की आवाज़ में। एल्बम का नाम है बेवफा तू। गीत है शीला सिंह के और संगीत दिया है ईशान पंडित ने।

कार्यक्रम का पहला एल्बम सॉन्ग अभी आपने सुना, इसे हमने लिया था एल्बम बेवफा तू से। कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना आइए सुनते हैं एल्बम दिल दिल से। इसे गाया है चैतन्य हारने ने, अंबिका

जेशे और कुमार जी के गीत हैं। श्रीनिवास मोहाद ने इसे संगीत से नवाजा है।

श्रोताओं, रसरंग कार्यक्रम में अभी आपने सुना एल्बम दिल दिल का यह गाना, जिसे गाया था चैतन्य हारने ने।

शब्द थे भाविका राजेश कुमार जी के और संगीत निर्देशन था श्रीनिवास मोहात के। कार्यक्रम का अगला एल्बम सॉन्ग आइए सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़ों में। एल्बम का नाम है दिल लौटा दो। कुणाल वर्मा के गीत हैं और संगीत हैं पायल देव के।

0: जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़ों में अभी आपने सुना यह एल्बम सॉन्ग जिसे हमने लिया था एल्बम दिल लौटा दो से। कुणाल वर्मा के शब्द थे और संगीत दिया था पायल देव ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रस रंग। कार्यक्रम के शेष गाने अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
0: संदेश के बाद आइए सुनते हैं रसरंग कार्यक्रम का अगला गाना जिसे हमने लिया है एल्बम फिर आओगे से। एमी मिश्रा के स्वर हैं, कुणाल वर्मा के शब्द हैं और संगीत दिया है एमी मिश्रा ने।

रसरंग कार्यक्रम में एमी मिश्रा के स्वर में अभी आपने सुना यह एल्बम गाना जिसे हमने लिया था एल्बम फिर आओगे से। रसरंग कार्यक्रम का अगला और आखिरी पेशकश ब्रज शर्वरी की आवाज में, एल्बम का नाम है मुझको बुला रहे हैं सितारे। सिया सचदेव के शब्द हैं और गोविंद भत्री ने इसे संगीत से सजाया है।

तो श्रोताओं, इसी एल्बम सॉन्ग के साथ एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। चित्रपट तराने कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म लव इन टोक्यो से। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी साहब की है, हसरत जयपुरी के शब्द हैं और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

चित्रपट तनाने कार्यक्रम का पहला गीत है, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम था लव इन टोक्यो। हसरत जयपुरी के शब्द थे और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सीमा से। आवाज़ें हैं मन्ना डे और साथियों की, शैलेंद्र के गीत हैं और संगीत दिया है जयकिशन ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म सीमा का यह बेहतरीन गाना। आवाज़ें थी मन्ना डे और साथियों की, शैलेंद्र के गीत थे और शंकर जयकिशन ने इस गीत को संगीत से सजाया था। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आइए सुनते हैं फिल्म राजकुमार का यह खूबसूरत गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। शैलेंद्र के शब्द हैं और संगीत

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं फिल्म दयावान का यह बेहतरीन गीत। आवाजें हैं कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक की। अजीत कैशी के शब्द हैं और संगीत हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के।

कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक द्वारा गाए इसी गीत के साथ है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हो चुके हैं। अब श्रोताओं आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:51 से। 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन, श्री रामचरित मानस पाठ, संगीत सरिता और भूले बिसरे गीत। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास। 8:00 आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:20 पर हमारे श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम पसंद आपकी, इसमें आप सुनेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी नगमे। 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतमालिका हम प्रस्तुत करेंगे सुबह 9:10 पर, 10:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आवाज, 10:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम लोक गीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी।

0: शाम 5:30 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी। कार्यक्रम के प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे आज के किसान राम नरेश पांडे, मछली पालन की तैयारी कैसे करें पर भेंट करता होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। 6:30 पर आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम, भोजपुरी फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सांझ गीते। 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। 7:50 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद का। रात्रि 9:30 पर हमारे श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। अब श्रोताओं आइए एक नजर डाल लेते हैं कल के मौसम पर। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 12 मई को जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ है आंधी चलने एवं हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 70 से 75% तथा दोपहर में 30 से 35% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 15 से 16 किलोमीटर की रफ्तार से पूर्वा हवा चलने की संभावना है। जिले के 1 या 2 स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बिजली चमकने, ओलावृष्टि तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो श्रोताओं अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर और मौसम पूर्वानुमान पर। FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर में हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: कुछ ही पलों में होंगे समाचार, पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक

0: सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources stemming the West Asia conflict, one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
0: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड द गवर्नमेंट इज मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट